0: और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सर्वप्रथम लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

ज्ञान ज्योति। मानव जीवन पर्यंत सोचता है कि यदि अवसर मिलता तो एक बढ़िया और नेक काम करता, लेकिन उसकी बढ़िया और नेक काम करने की इच्छा अधूरी ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि अक्सर वह जिंदगी में बुरे दौर से जब गुजरता है तो उससे बाहर निकलने और जब अच्छे दौर में होता है तो उसी को कायम रखने में ही व्यस्त रहता है। वो सोचता है कि यही परम आनंद है, यही सुख की अनुभूति है, परंतु उसे ये नहीं पता कि सुख की अनुभूति तो सच्ची भक्ति में है, अध्यात्मवाद में है। यूं ही जीवन गुजर जाता है और जब अंत समय आता है तो वही इंसान पछताता है, सोचता है मैंने हरि सुमिरन क्यों नहीं किया, मैंने ये सारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। तो समय रहते आइए हम भी ईश्वर का गुणगान करें, हरि सुमिरन करें, प्रभु चरणों में लगें। ज्ञान ज्योति।

0: भक्ति भाव से परिपूर्ण मन हमेशा ही अहंकार से दूर रहता है। वो दीन दुखियों की सेवा करता है। वो सोचता है कि जो भी बोलूं उससे भी दूसरों को आनंद मिले, जो भी करूं उससे दूसरों को आनंद मिले। वो चाहकर भी और अनजाने में भी कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहता।
1: कन्हैया की विरह में गोपियों की जो दशा है, उसी का वर्णन एक गोपी के द्वारा इस भजन में बड़ी सुंदरता से किया गया है।

जब सारे रास्ते खो जाएं, सभी दिशाएं बंद हो जाएं, तब भी एक मार्ग खुला रहता है, वो मार्ग है भक्ति का। जी हाँ, प्रभु एक ऐसा द्वार खोलते हैं जहाँ पर सभी समस्याओं का हल पाया जाता है, जहाँ पर कोई भी दुखी नहीं होता, जहाँ पर सभी परम आनंद को महसूस करते हैं। ये है मार्ग भक्ति का, आनंदमय मार्ग। और ये आनंद प्राप्त होता है राम नाम के जाप से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर से FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सच्चे मार्ग पर चलें सदा प्रभु, ऐसा दो हमको वरदान। न भटके कहीं मन हमारा, बस लगे प्रभु चरणों में ध्यान। सच्चे मार्ग पर चलें सदा हम, प्रभु ऐसा दो हमको वरदान। प्रभु ऐसा दो हमको वरदान।

इसी कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ एपिसोड नंबर 6।

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ भाग 6। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार और प्रातः 7 बजे हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। सुप्रभात हमीरपुर हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनेगा प्रातः 7:05 पर। समाचार प्रभात का अंक प्रातः 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा प्रातः 8:30 पर। 8:35 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। सुबह 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुबह 10:05 पर लेकर आएंगे आपके लिए लघु वार्ता, विषय योग अपनाएं जीवन सरल बनाएं। सुबह 10:15 पर सुनिएगा लाइव ऑन इन प्रोग्राम गल तुसांदी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 11 बजे।

से आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसी दौरान दिन में 2 बजे सुनिएगा मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दिन में 3 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार वो 3:05 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी। 3:10 से जारी रहेगी विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 5:05 से सुनेगा कार्यक्रम रूपरेखा। भजन संध्या कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 5:07 पर। युवाओं का कार्यक्रम युव मंच आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम ठीक 6 बजे। लेकर आएंगे आपके लिए सफर सुहाने गाने नए पुराने शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर सुनेगा खेतीबाड़ी कार्यक्रम। शाम 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। देश गान सुनिएगा शाम 7:05 पर। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8 बजे से सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 9:15 से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि ठीक 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10:30 पर। देर रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और प्रातः 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिकशैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को

0: स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो, जब भी खोलें आप पलकें अपनी, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो, खुशियों की झलक हो। सुप्रभात, नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। हर बार की तरह कार्यक्रम का आगाज होता है खूबसूरत विचार के साथ। जी हाँ, कुछ ऐसी पंक्तियां जो हमारा दिन बना देती हैं, यूं कहें कि हमें एक राह मिल जाती है इन पंक्तियों से। तो आज का विचार छुपा है इन पंक्तियों में। दोस्तों, मुश्किलों से डरना क्या, ये तो बस इम्तिहान है, इन्हीं से ही मजबूत बनते हम सब इंसान हैं। गिरकर जो संभलते हैं वही पाते हैं मुकाम, हौसलों की उड़ान से ही बनते हैं सारे बिगड़े काम। फर्क नहीं पड़ता आज कितनी रातें हैं अंधेरी, फर्क नहीं पड़ता आज कितनी रातें हैं अंधेरी, हर सुबह लाती है उम्मीदों की किरणें सुनहरी। तूफानों में जो पलते हैं वही इतिहास रचते हैं। गौर फरमाइएगा दोस्तों, तूफानों में जो पलते हैं वही इतिहास रचते हैं, लक्ष्य की ओर जो बढ़ते हैं वो कभी नहीं थकते हैं। रख यकीन खुद पर और मेहनत का हाथ थाम ले, रख यकीन खुद पर और मेहनत का हाथ थाम ले, तूफानों में भी दीपक जला करते हैं, ये हिम्मत है और हिम्मत है बस ये जान ले। जीत निश्चित है तेरी, जीत निश्चित है तेरी, तू बस अपने कदमों को रफ्तार दे, इस नई सुबह के साथ तू खुद को एक नया आकार दे, तू खुद को एक नया आकार दे। जी दोस्तों, तो ये था आज का विचार। जी हाँ, देखिए ना, कहते हैं चलते रहने का ही नाम जिंदगी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पाया नहीं करते। तो भाई बिल्कुल, जब जिंदगी की शर्त है कि चलते ही रहना है तो हमें जिंदा दिली के साथ चलना है। कौन सा ऐसा इंसान है दोस्तों, या आप किसी ऐसे इंसान से मिले अपने जीवन में जिसके जीवन में कभी भी कोई भी दुख नहीं आया, कभी भी कोई भी परेशानी, तकलीफ या कोई समस्या नहीं आई? जी नहीं, आपका जो उत्तर होगा यकीनन यही होगा कि नहीं, ऐसा इंसान तो हमने जीवन में कहीं नहीं देखा। चाहे आज वो चमकते सितारे हों, लेकिन उन्होंने भी कभी हार का मुँह देखा होगा। तो यही है आज का विचार कि हमें भी आगे बढ़ते रहना है और जिंदा दिली जिंदा रखनी है दिल के अंदर। तो चलिए, इसी विचार के साथ अब रुख करते हैं मनोरंजन का और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: दोस्तों कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। जी हाँ, कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर और ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर से, यानी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और पीछे मुड़कर देखते हैं, यानी कि अब बात इतिहास की करते हैं। आज है 3 जून का दिन। तो चलिए बात करते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। सबसे पहले बात करते हैं सन 1918 की। गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ आज ही के दिन, और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी को राजभाषा माना गया, यानी हिंदी राजभाषा मानी गई थी आज ही के दिन 3 जून सन 1918 में। बात करते हैं सन 1994 की। तो आज ही के दिन भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया था। बात करें सन 1999 की, तो आज ही के दिन हावरक्राफ्ट विमानों के आविष्कारक क्रिस्टोफर काक्रेल का निधन हुआ था, और युगोस्लाविया द्वारा कोसोवो शांति योजना को मंजूरी भी मिली थी आज ही के दिन। आज ही के दिन सन 1999 में मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। सन 2004 में आज ही के दिन केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने थे। सन 2005 की बात करें तो आज ही के दिन फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया था। दोस्तों आज ही के दिन यानी 3 जून और सन 2008 को तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी थी मंजूरी और आज ही के दिन वापस ली थी। आज ही के दिन यानी 3 जून सन 2008 को। 2008 की ही बात है तो आज ही के दिन जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिला था, नाम था केपलर 37B। श्रोताओं इतिहास के पन्नों में हम बताएंगे वो हस्तियाँ जो आज ही के दिन 3 जून को यानी जन्म लेकर इस दुनिया में आई थी, और आज ही के दिन यानी 3 जून को कौन कौन सी हस्तियों ने कहा था इस दुनिया को अलविदा। लेकिन रुख करेंगे एक गीत की ओर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। आपको गीत सुनवाने से पहले वादा किया था कि अब हम आपको देंगे जानकारी आज के दिन जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सन 1982 की। तो आज ही के दिन यानी 3 जून सन 1982 को जन्म हुआ था तृप्ति मुरगंडे का, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और जो एकल और युगल खेलती हैं। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1941 में जन्म हुआ था रूमा पाल का, जो भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही हैं। आज ही के दिन सन 1930 में जन्म हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस का, जो एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता थे, जो राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। सन 1929 में जन्म हुआ था चिमन भाई पटेल का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज ही के दिन 1924 में जन्म हुआ था एम करुणानिधि का, जो भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1912 में जन्म हुआ था सोहराब फिरोज शाह गोदरेज का, जो प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, उद्यमी और गोदरेज समूह के अध्यक्ष रहे हैं। बात करें सन 1995 की, तो आज ही के दिन पणिक्कर के एम का भी जन्म हुआ था, जो मैसूर के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, राजनायक और विद्वान रहे हैं। सन 1867 की बात करें तो आज ही के दिन हर विलास शारदा का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक रहे हैं। आज ही के दिन सन 1844 में बाल कृष्ण भट्ट का भी जन्म हुआ था, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष नेता निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन यानी 3 जून को किन महान हस्तियों ने कहा इस दुनिया को अलविदा। सन 2011 में आज ही के दिन भजन लाल का निधन हुआ, जो हरियाणा के कुशल राजनीतिज्ञ तथा 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1994 में आज ही के दिन त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल का भी निधन हुआ था, जो सामुदायिक नेतृत्व में जिनका नाम आता है। 1976 में निधन हुआ था बिगगो कैंपमैन का, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, जो डेनमार्क के सामाजिक डेमोक्रेट्स के नेता भी रहे हैं। 1976 में ही आज ही के दिन निधन हुआ था मुनि जिन विजय का, जो प्राचीन भारतीय साहित्य के अन्वेषी, संपादक और पाठालोचक रहे हैं। 1974 में निधन हुआ था कृष्ण बल्लभ सहाय का, जो बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1925 में दोस्तों आज ही के दिन निधन हुआ था वीवी सुब्रमण्यम अय्यर का, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी राष्ट्र भक्त थे। इन्हीं जानकारियों के साथ आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। बता देते हैं फिर से उन दोस्तों को जिन्होंने अपना रेडियो सेट अभी अभी ऑन किया हो, आप बने हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर के साथ एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर। समय प्रातः के 7:31 और पूरे 30 सेकंड।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दोस्तों, अंतराल से पहले जो गीत आपने सुना वो लिया गया था दिल ही तो है फिल्म से। स्वर थे सुमन कल्याणपुर वो मुकेश कुमार के। और इससे पहले जो गीत आपने सुना था वो हमने लिया था धूल का फूल फिल्म से, और उसमें स्वर थे आशा भोंसले व साथियों के।

दोस्तों, अब हम आपको रूबरू करवाएंगे आपको आज की कुछ ताजा तरीन समाचारों के साथ। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत सबसे पहले, और आपको बताएं 12वीं कक्षा के मूल्यांकन में मचे हाहाकार और निविदा आवंटन में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों में भारी गुस्से के बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह व सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा दिया है। साथ ही ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी करने में गड़बड़ियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय एक सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष व आईएएस अधिकारी राधा चौहान की अध्यक्षता वाली इस समिति को एक महीने में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, वहीं बात करें तो आपको बताएं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुखोई 30 से किए गए परीक्षण में स्वदेशी मिसाइल की सभी प्रणालियों की क्षमता की पुष्टि की गई है। मिसाइल ने तय लक्ष्य सटीकता के साथ भेजा। यह एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस रडार, ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और संचार टावरों से निकलने वाले सिग्नल पकड़कर उन्हें तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, अब बात करें दूसरे राज्यों से ब्याह कर लाई गई महिलाओं के बारे में, तो आपको बताएं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों से शादी कर लाई गई आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी की महिलाएं यहां आरक्षण का दावा नहीं कर सकती, भले ही वे अपने गृह राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती हों और हिमाचल में उनकी जाति आरक्षित हो। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी को खंडपीठ ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि विवाह के बाद जिस राज्य में कोई व्यक्ति विस्थापित होता है वहां उसे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं दोस्तों, आपको बताते हैं 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर एक बार फिर ट्रेनों की छुक छुक सुनाई दी है। चक्की पुल के पुनर्निर्माण के बाद जोगिंदरनगर पठानकोट नैरोगोज के ट्रैक पर रेल सेवा बहाल हो गई है। मंगलवार को कांगड़ा के समेला रेलवे स्टेशन पर सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, विधायक पवन काजल और रणवीर सिंह ने संयुक्त रूप से रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों, बात करें आगे तो आपको बताएं महिलाओं के हाथ पंचायती राज संस्थाओं की कमान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ने गाँव की सरकार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की नई तस्वीर पेश की है। प्रदेश में 16,691 महिलाएं जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायतों के विभिन्न पदों पर चुनी गई हैं। ये कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 53.82% है। 14,320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं जिनकी हिस्सेदारी 46.18% पाई गई है। ऐसे में ज्यादातर पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, लेकिन इस बार इनकी भागीदारी इससे आगे बढ़ गई है।

दोस्तों वहीं आपको बताएं तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद अब नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को मुख्यमंत्री स्वयं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों को संबंधित जिलों के उपायुक्त और BDC सदस्यों को SDM शपथ दिलवाएंगे। यह प्रक्रिया चुनाव परिणाम अधिसूचित होने के 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। प्रधान और उप प्रधान को कभी भी शपथ दिलाई जा सकती है, इसके लिए समय सीमा नहीं है। वार्ड सदस्यों को प्रधान पंचायत भवन में शपथ दिलाई जाएगी।

और श्रोताओं, तभी अब आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश की 650 पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली ग्रांट पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र ने 14वें वित्त आयोग के तहत इन पंचायतों के विकास कार्यों के लिए जारी 6 करोड़ रुपए खर्च ना करने पर यह रोक लगाई है। जब तक यह राशि खर्च नहीं की जाती, तब तक केंद्र सरकार इन पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत पैसा जारी नहीं करेगी। इससे इन पंचायतों में विकास कार्य बाधित होंगे।

वहीं दोस्तों आपको बताएं तो हमीरपुर ज़िले में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संस्थानों में स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। करीब 40 स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत 513 पदों में से 421 पद ही भरे जा चुके हैं, जबकि 96 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व अन्य श्रेणियों के पद शामिल हैं। रिक्त पदों के चलते अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कई संस्थानों में लंबे समय से पद खाली होने के कारण मरीजों को आवश्यक सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

दोस्तों वहीं आपको बताएं कि उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे भारत की जनगणना की प्रक्रिया के तहत स्वगणना पोर्टल ASE सेंस GVOV इन पर अपना डाटा स्वयं भरें। इससे जनगणना की प्रक्रिया बहुत ही आसानी, सटीकता एवं तेजी के साथ पूरी की जा सकेगी। मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यशाला में गंधर्वा राठौर ने कहा कि हमीरपुर जिले में भी जनगणना की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में इस वर्ष 16 जून से 15 जुलाई तक प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं मकान गणना करेंगे। इसके बाद अगले वर्ष वास्तविक जनगणना की जाएगी। इस बार की जनगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। इसमें लोगों को कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ऑनलाइन स्वयं की जानकारी अपलोड करने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए स्वगणना पोर्टल को पहले से 15 जून तक खोला गया है। सभी परिवारों के मुखिया या अन्य लोग 15 जून तक अपने मकानों एवं भवनों से संबंधित जानकारी स्वयं इस पोर्टल पर भी भर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसे कुछ मिनटों में ही पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों, बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भेजे गए 3 प्रस्तावों को स्वीकृति का इंतजार है। AICTE ने प्रस्तावों का मूल्यांकन कर लिया है, लेकिन अभी तक परिणाम पर जानकारी साझा नहीं की गई है।

और दोस्तों वहीं आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का ज्ञान देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए AI का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। इस पाठ्यक्रम को लागू करने के संबंध में प्रदेश सरकार के साथ बैठक भी हो चुकी है। अब लिखित मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। और वहीं आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में इस बार उल्लेखनीय तेजी दिखाते हुए BCom तृतीय वर्ष का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के 1 माह से भी कम समय में जारी कर दिया है। 10 मई को आयोजित परीक्षा का परिणाम 2 जून को घोषित किया गया। हाल के वर्षों में ही परिणामों में देरी को

दोस्तों अब आपको लेकर चलेंगे खेल के मैदानों तक, यानी कि खेल समाचारों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेल समाचारों की। तो आपको बताएं, इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच अब खत्म हो गया है, लेकिन क्रिकेट का रोमांच और बढ़ने लगा है। पुरुष क्रिकेट के बाद अब बारी महिला क्रिकेट की होगी, जिसमें 12 देशों की खिलाड़ी 24 दिन तक 33 मैचों के बाद महिला क्रिकेट की विश्व T20 चैंपियन बनने के लिए आपस में भिड़ेंगी। और आपको बताएं कि महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होने वाले मुकाबलों में 81 करोड़ की इनामी रकम होगी दांव पर। और वहीं आपको बताएं, BCCI ने पूर्व लेग स्पिनर सैराज बहुतुले को मंगलवार को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। वह 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एक टेस्ट मैच की श्रृंखला से ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। भारत के लिए 2 टेस्ट और 8 वनडे खेलने वाले बहुतुले IPL में पंजाब किंग्स के साथ जुड़े थे। और वहीं एशियाई खेलों के ट्रायल में 53 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट को हराने वाली मीनाक्षी गोयल के प्रोस्टेट पर भारतीय कुश्ती महासंघ ने उनके और अंतिम पंघाल के फाइनल का वीडियो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को समीक्षा के लिए भेजा है। इस मुकाबले में मीनाक्षी को अंतिम के हाथों 2-3 से हार मिली थी, लेकिन उन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह के सामने इस परिणाम का जमकर विरोध किया था।

और दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन खास की। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मना रहे हैं। जी हाँ, ये दिन हम आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जी, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाइसिकल दिवस। दोस्तों आपको बताएं कि विश्व साइकिल दिवस जो है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को मनाने के लिए घोषित हुआ है। आज ही के दिन साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था। साइकिल दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्चेक सिबिलिस्की ने याचिका दी थी। इसके बाद सिबिलिस्की और उनके साथियों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय ले लिया गया। अब क्या महत्व है इस दिन को मनाने का? देखिए, साइकिल वैसे तो सबसे सस्ता वाहन है। इसके एक ही नहीं अनेकों फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती है, पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और भाई साइकिल चलाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों भाई, ये कहा जाता है कि रोज साइकिल चलाने से फैट जल्दी कम होता है, बॉडी फिट रहती है, और करीब 30 मिनट तक रोज साइकिल चलानी चाहिए। जो भी साथी हमारे साइकिल चलाते हैं उनको तो बहुत बहुत बहुत मुबारक हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जो साथी हमारे साइकिल नहीं चलाते हैं तो भाई हम उनको ये कहते हैं कि साइकिल आप भी चला सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और साथ ही इम्यून सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। और दोस्तों, एक उम्र के बाद घुटने की समस्या हो जाती है अक्सर। तो आपको बताएं कि रोज़ अगर हम साइकिल चलाते हैं तो घुटने की समस्या से भी हम निजात पाते हैं। इससे किसी भी प्रकार के जोड़ों में दर्द नहीं होता। साइकिल चलाने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, ब्रेन पावर बढ़ता है। 15-20% अधिक दिमाग सक्रिय होता है साइकिल चलाने से, और बचत की नज़र से ये काफ़ी अच्छा है और सस्ता साधन है। देखा

जाए तो आज वक्त में यूथ फिट और एक्सरसाइज के लिए साइकिल खरीद रहे हैं। तो आइए भाई, हम सभी भी साइकिल चलाएं और एकदम फिट हो जाएं। साथ में अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखें। और जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो भाई, योग की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई, योग अपनाएं और जीवन को आप सुरक्षित कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। जी हाँ, कुछ हल्का फुल्का योग या ध्यान योग हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहता है। हमें कई तरह की बीमारियों से मुक्ति दिलाता है योग, और हमें मानसिक तौर पर स्थिर बनाता है योग। अध्यात्मवाद से भी जोड़ता है योग। और यूं ही भारत को विश्व में विश्व गुरु नहीं कहा जाता योग का, कुछ तो बात है इस योग में। दुनिया के कोने कोने में लोग योग को अपना रहे हैं और अपना जीवन स्वस्थ बना रहे हैं। पर आवश्यक है कि योग नियमित रूप से किया जाए, थोड़े से मिनटों से शुरुआत की जाए और उसको नियमित रखा जाए। तो स्वस्थ रहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। तो ये था आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, और इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी यहीं पर पूरा हो रहा है। लेते हैं आपसे अनुमति इस कार्यक्रम से, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बने रहिए देवभूमि आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। सुप्रभात।

0: अभी आप सुन रहे थे सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं

0: स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद

के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस

0: under the headline, World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled, Tigress Zenith Gives Birth to Four Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, host England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series to 1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ने गांव की सरकार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की नई तस्वीर पेश की है। प्रदेश में 16,691 महिलाएं जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के विभिन्न पदों पर चुनी गई हैं। यह कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 53.82% है। 14,320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 46.18% है। ऐसे में ज्यादातर पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, लेकिन इस बार इनकी भागीदारी इससे आगे बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों से शादी कर लाई गई आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी की महिलाएं यहां आरक्षण का दावा नहीं कर सकती हैं, भले ही वे अपने गृह राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती हों और हिमाचल में उनकी जाति आरक्षित हो। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र ने की खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि विवाह के बाद जिन राज्य में कोई व्यक्ति विस्थापित होता है वहां उसे आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के बाद अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को मुख्यमंत्री स्वयं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों को संबंधित जिलों के उपायुक्त और BDC सदस्यों को SDM शपथ दिलवाएंगे। यह प्रक्रिया चुनाव परिणाम अधिसूचित होने के 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। प्रधान और उप प्रधान को कभी भी शपथ दिलाई जा सकती है। इसके लिए समय सीमा नहीं है। वार्ड सदस्यों को प्रधान पंचायत भवन में शपथ दिलवाएंगे।

उपायुक्त गंधर्व राठौर ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे भारत की जनगणना की प्रक्रिया के तहत स्वयं गणना पोर्टल SECensus.gov.in पर अपना डाटा स्वयं भरें। इससे जनगणना की प्रक्रिया बहुत ही आसानी, सटीकता एवं तेजी से पूरी की जा सकेगी। मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यशाला में गंधर्व राठौर ने कहा कि हमीरपुर जिले में भी जनगणना की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाना है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट के लिए 1440 आवेदनों को रद्द कर दिया है। बोर्ड की ओर से यह कार्यवाही उन अभ्यर्थियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने आवेदन पत्र अधूरे छोड़े थे या परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया था। शिक्षा बोर्ड के पास 33971 आवेदन पहुँचे थे। बोर्ड की स्क्रूटनी के बाद अब 32531 आवेदन ही सही पाए गए हैं। JBT भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दिन यदि किसी उम्मीदवार को HP टेट है तो वह 5 जून तक राज्य चयन आयोग को मेल के माध्यम से सूचित कर सकता है। इसके लिए राज्य चयन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज के हिमाचल डायरी के अंक में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 8:35 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

फिल्म आकर्षण का ये गाना आपने सुना पंडित चुन्नूलाल मिश्रा की आवाज में। प्रसून जोशी के बोलों को संगीत से सवारा था शंकर एहसान लॉय ने। चित्रलोक कार्यक्रम में आगे कुछ और गीत लेकर हाजिर होंगे इस अंतराल के बाद।

साथ खून माफ फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गीत में पंडित विश्वमोहन भट्ट की मोहन वीणा भी आपने सुनी। गुलजार का लिखा ये गीत था जिसे संगीत से सवारा था विशाल भारद्वाज।

स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, शांतनु मोइत्रा का संगीत, शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना पीके फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाज़ों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाज़ें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रथा के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।
1: विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की है प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप का दावा, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत करेगी हासिल। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में स्वगणना अभियान जारी, आम जनमानस स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी 15 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज। कुल्लू जिला में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जारी। और मौसम विभाग का आज से 6 जून तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आम जन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सोलन में पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य HRTC को मजबूती प्रदान करने के साथ ही राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देना है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई है और इसमें 32 आरामदायक सीटों के साथ सामान रखने का भी उचित प्रबंध होगा। उन्होंने कहा कि बसों के लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन ई बसों के रूट ट्रायल का कार्य पूरा हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों से साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है जबकि भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के लिए हर संभव प्रयास किए लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने में आने से पहले जो गारंटियां और वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया जिसके चलते जनता ने चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि ये चुनावी नतीजे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप है और भाजपा आगामी चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेगी।
4: जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो जनमत को खो चुकी है और ये जो जीत का क्रम है अब ये रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आगे अब 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है क्योंकि जो अभी पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो ग्राउंड रूट का जो कार्यकर्ता है या धरातल के ऊपर जो आम जनमानस है वो इस बात को समझ चुका है कि हमारा जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है और प्रदेश में अपनी सरकार।
3: राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक जागृति और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने की सराहना की है। वे कल शिमला में आध्यात्मिक वक्ता शिवानी के ध्यान व प्रवचन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संस्था वर्षों से सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मूल्य आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि ब्रह्म कुमारी लोगों को ध्यान, आत्मचिंतन और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से आत्म जागरूकता विकसित करने में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण समाज के लिए बेहद आवश्यक है। कांगड़ा जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों सहित विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण व शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। हेमराज बैरवा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में आम जनमानस 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी स्वगणना अभियान आरंभ किया गया है। हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने पर एक स्वगणना आईडी प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान भी किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागवान मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर व सिरमौर जिले में HP शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की कल शिमला में अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में धरातल पर चल रहे सिविल कार्यों की स्थिति, काम के दौरान पेश आ रही चुनौतियों, गुणवत्ता और कार्यों को समय पर पूरा करने के संबंध में भी चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने संबंधित विभाग के सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति न होने की स्थिति में खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएंगे। बागवानी मंत्री ने कहा कि कार्य में गुणवत्ता न होने पर संबंधित फर्मों के साथ साथ देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कुल्लू जिले में रैबीज के मामलों को कम करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने व नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करना और इनके द्वारा लोगों को काटने के मामलों में कमी लाना है। एक रिपोर्ट।
5: कुल्लू जिला में रैबीज के मामलों को कम करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पहल जारी करते हुए मुहिम चलाई गई है। पशुपालन विभाग ने पिछले 5 माह के दौरान 4,416 कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा 224 लावारिस कुत्तों की नसबंदी भी की गई है। विभाग ने वैक्सीनेशन और नसबंदी का कार्यक्रम जारी रखा है ताकि कुत्तों के काटने तथा सड़कों पर उनकी बढ़ती संख्या के मामलों में कमी लाई जा सके। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला में पशु चिकित्सालय माहौल के अलावा मनाली, रायसन व बंजार चिकित्सालय को इस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिला के हर क्षेत्र में पालतू और लावारिस कुत्तों के नसबंदी और एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि रैबीज की बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
3: प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में आगामी 8 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने आज से 6 जून तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर बारिश, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा व चोटियों पर हुए हल्के हिमपात से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर मैदानी व निचले क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत राहत मिल रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, दूसरे राज्यों से ब्याह कर लाई गई महिलाओं को आरक्षण नहीं, जिस राज्य में कोई विस्थापित होता है वहां उसे आरक्षण नहीं मिल सकता। पंजाब केसरी ने पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन पर लिखा है, लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद बहाल हुई कांगड़ा घाटी रेल सेवा। दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक कांगड़ा में नैरो गेज ट्रेन सेवा बहाल, अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दैनिक जागरण के शब्द है, शिमला में सील्ड सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोकने पर वकीलों का प्रदर्शन, मंत्री की गाड़ी का चालान कटवाया, बड़े अफसर घटाएंगे कर्मचारी बढ़ाएंगे शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 800 और पद भरेंगे। वही हिमाचल दस्तक के अनुसार अफसरों के काडर में कटौती कर निचले स्टाफ की ज्यादा भर्ती करेगी सरकार। दैनिक भास्कर के शब्द है, पूर्व सैनिकों की मानद नियुक्ति, 246 को बनाया हेड कांस्टेबल तो 115 बने ASI। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की है प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप का दावा, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत करेगी हासिल। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में स्वगणना अभियान जारी, आम जनमानस स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी 15 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज। कुल्लू जिला में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जारी। और मौसम विभाग का आज से 6 जून तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है और उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया है।

की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पर शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब धूम मचाई।

1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही है।

उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

सोनाक्षी सिन्हा की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में और भी हैं, जैसे कि वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मिशन मंगल, दबंग 3।

0: दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस्केप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लघु वार्ता।

नमस्कार श्रोताओं, आज की लघु वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है योग अपनाएं, जीवन सरल बनाएं। श्रोताओं, क्या आप चाहते हैं कि आपका हर दिन उत्साह से भरा हो? क्या आप चाहते हैं कि तनाव, चिंता और थकान आपसे कोसों दूर रहें? यदि हाँ, तो इसका सरल और प्रभावी उपाय है बस योग। क्या है योग? जब सूरज की पहली किरण के साथ तन और मन एक नई ऊर्जा से भर जाएं, जब तनाव की जगह शांति और थकान की जगह उत्साह ले ले, तो समझिए कि जीवन में योग का प्रवेश हो चुका है। ये बहुत ही सरल उपाय है खुशहाल जीवन का, या यूं कहें जीवन को सरल बनाने का। श्रोताओं, आज के इस भाग दौड़ भरे युग में योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सुखद जीवन जीने की कला है। योग हमें सिखाता है कि कैसे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके, यानी कि कैसे संतुलन बनाया जा सके।

श्रोताओं, संस्कृत में योग का अर्थ जुड़ना या एकजुट होना है। यह एक प्राचीन कला और विज्ञान है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़कर समग्र स्वास्थ्य और आंतरिक शांति प्रदान करती है। श्रोताओं, आज के इस भागदौड़ भरे युग में योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि वो विज्ञान हमारे पास उपलब्ध है जिससे हम सभी समस्याओं का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योग है स्वास्थ्य का आधार, यही है खुशियों का संसार। योग अपनाएं, रोग दूर भगाएं, जीवन को सरल बनाएं, जीवन को सफल बनाएं। श्रोताओ, योग केवल शरीर को मोड़ने या व्यायाम करने का नाम ही नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने और समझने और निखारने का माध्यम है। योग हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ किया जा सकता है। हम यूं कह सकते हैं कि योग वह दीपक है जो स्वास्थ्य, सुख और शांति का प्रकाश फैलाता है। कुछ मिनटों का योग शरीर को चुस्त बनाता है, मन को शांत करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में योग को अपनाया जा रहा है क्योंकि योग हमें प्रकृति से जोड़ता है और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। योग शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, योग मन को शांत और एकाग्र करता है, योग तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर भगाता है, योग हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है। श्रोताओ, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग से शरीर लचीला, मजबूत बनता है और जोड़ों के दर्द व बीमारियों से बचाव होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी तनाव से भरी हुई है, तो योग हमें तनाव से भी मुक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम और ध्यान मानसिक शांति देते हैं जो तनाव हार्मोन को कम करते हैं। यह हमें बेहतर एकाग्रता प्रदान करता है, यह मन को शांत करता है जिससे निर्णय लेने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है।

श्रोताओं, ऊर्जा का संचार बढ़ाता है योग। नियमित अभ्यास से थकान मिटती है और शरीर में शक्ति आती है। पूरे दिन की शरीर में चुस्ती और नई ऊर्जा बनी रहती है योग से। आत्म जागरूकता बढ़ाता है योग। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है।

हम अपने भागदौड़ के इस जीवन में हर दिन थोड़ा सा समय योग के लिए निकाल सकते हैं। सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। आप थोड़े से मिनटों के साथ ही योग शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे से आप समय अवधि बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप नियमित रूप से जीवन में योग को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मानसिक शांति भी मिल रही है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ रही है। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का उपहार। हर दिन योग को अपनाएं, खुशियों से जीवन महकाएं। जहां योग है वहां रोग नहीं, जहां योग है वहां निराशा नहीं। योग से ही जीवन में आती है नई उमंग, योग से ही खिलते हैं खुशियों के रंग।

अतः आप भी जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज की लघु वार्ता बस इतनी ही।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में यानी 10:15 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तुसांदी। हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 22 31 22, हमीरपुर का एरिया कोड 0197 2।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए स्थानीय बोली में लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तुसांदी।

लाइफ ऑन इन कार्यक्रम गल तुसांदी सुनने आले अहां दे सारे श्रोतियां जो बहुत बहुत अहां दी राम राम नमस्कार कने कर दे कार्यक्रम च तुहां दा बहुत सारा स्वागत। अहां दे स्टूडियोज दा फोन नंबर तो अहां दे सारे पुराने ही श्रोतियां जो पता है, पर अहां अपने नए श्रोतियां जो भी एक बार फिरी ते अपना स्टूडियोज दा फोन नंबर दसना 2231322 कने हमीरपुर दा एरिया कोड रहना जी 0192।

जी श्रोतियो, जीवन जीने दी अनमोल दवा शुद्ध पानी कने शुद्ध हवा। तो श्रोतियो, जी अगर पेड़ बोली पांदे ता ए यहां जो बोल दे कि मैं तुहां जो छाया दिंदा, मैं तुहां जो फल फूल दिंदा, मैं तुहां जो अनगिनत चीजां दिंदा, सारियां ते बड़ी गल मैं तुहां जो प्राण वायु दिंदा, पर बदले च बस मैं तुहां ते एक ही चीज मंगदा, से क्या भला? सोचा, से क्या? श्रोतियो, बदले च पेड़ बस एक ही चीज अहां ते मंगदा कि मिंजो भी जीने दिया, मिंजो भी जीने दिया। जी हाँ श्रोतियो, अहां सारे जान दे कि हर साल 5 जून जो अहां मनांदे विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि बस आने ही आला है। तो आज इस कार्यक्रम च अहां बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर गल करनी, और ये विषय है कि अहां दा जो ये सच्चा पक्का मित्र है अहां दा पर्यावरण, यानी पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी, है ना, ये नहीं है बल्कि ये पर्यावरण, ये अहां दा मित्र जीने दा आधार है। आज अहां गल करनी कि अहां अपने इस सच्चे मित्रा सौगी जे आ, जो अहां वास्ते एक अमूल्य उपहार है पृथ्वी पर, धरती पर अहां इसी सच्चे मित्रा सौगी दुश्मनी का निभाई कर दे भला। लेंदे कार्यक्रम च पहली फोन कॉल। राम राम जी।

जी हाँ श्रोतियो, तुहां इस विषय पर अहां सौगी गलबात साझा करी सकते। अपने स्टूडियोज़ का फोन नंबर हाँ तुहां जो दस्या है पहले भी 2221 कने हमीरपुर का एरिया कोड 0972 ये नंबर तो हमें लाई सकते। अहां सौगी गलबात करी सकते। अज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये सच्चा पक्का मित्र है अहां दा पर्यावरण जो भगवान दा दित्या एक अमूल्य उपहार है तो कजो अहां तुहां इस सच्चे मित्रा सौगी दुश्मनी निभाई कर दे। लेंदे कार्यक्रम च पहली फोन कॉल। राम राम जी, राम राम जी।

0: जी श्रोतियो, कृष्णा शर्मा दा गायरा ए लोक गीत सुनिया तां कार्यक्रम में लाइव फोन इन गल तुसां दी करदे एक श्रोता सौगी गलबात। राम राम जी।
1: सर मैडम जी, मैं पारंपरिक शांति सूर शर्मा बोल
0: जी, बहुत बहुत स्वागत।

0: शांति स्वरूप जी, क्या हाल चाल तो हंदे?
1: बस ठीक ठाक है मैडम जी।
0: जी तो आज का विषय तुहां सुनया होगा है ना?
1: हाँ जी पर्यावरण दिवस है जो
0: सर बड़ी जल्दी पर्यावरण दिवस आने वाला है 5 जून जो ता अज हाँ इसी विषय पर गलबात करनी कितना हाँ दा प्यारा मित्र इतना सच्चा मित्र भगवान दा हाँ जो उपहार है और इसी मित्र सौगी हाँ दुश्मनी निभाई कर दे है ना।
1: हाँ जी सब ते जिस जरूरी हाँ जी तो पहले बुलाए बैठे भी जेड़े हाँ जी वृक्षां दा मतलब हाँ जी जेड़े हाँ तिना कटान जेड़ा है या तिना जी नोई पौध नहीं लगाने दा जेड़ा है ना हाँ जी बड़ी एक अनगहली है
0: जी
1: क्योंकि यही जरा एक मेन स्रोत था पहले जिया खेती बाड़ी होंगी थी तो बीड़ा पर भी सारे दे कोई ना कोई दरख्त लगे होंगे था।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जैसे हूँ खेती बाड़ी बंद करी थी कई लोगों तो हूँ कि खेतों के कंडिया पर कने बीड़ा पर कुनी लगाने से पौधे
0: जी
1: कने दूरी क्या गल थी भी जिया हूँ सक्शन हो गई बड़ी भारी तो
0: हाँ
1: इस वास्ते भी हाँ जो वृक्षा का कटान जो है ना अंधाधुंध करा कद
0: जी जी
1: पर्यावरण जो खराब करने का जो मेन मकसद इन्हों का है सह यही है भी जरा मतलब कटान कटून करी लेना जहाँ तो हाँ भी बेमौसमियाँ बरखा हो रही सारे पास नुकसान हो रहे तो यह भी है एक मतलब बड़ा कारण जो है
0: जी जी और ये बहुत ही दिखा एक समस्या भरा और बहुत ही गंभीर कारण है ना।
1: जी।
0: ता अहाँ तुहाँ ये कारण है इस जो ये समस्या है इस दे ना ता अहाँ क्या करी सकते शांति स्वरूप जी अहाँ क्या इस वास्ते तुहाँ क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखा जी मतलब इस वास्ते पहले ही हाँ जो ये करना पड़ना भी कुछ ही भी हाँ जो स्थान जो मिलता है ना अपने घर आसे पास तिथू मतलब पौधे जरूर लगाइए
0: जी
1: कोई
0: जी
1: वृक्ष दे लगाइए इन्हें तक दिखा तो हम हाँ जिन चीजें नहीं लगाते ना जी उबड़न हो एक वगैरह जी अपू जमी पौनी लेकिन मतलब ये भी एक तरह पर्यावरण जो कर दिया दिखा मिट्टी का जरा डनाल होंगी यहाँ पर मिट्टी नहीं बही सकती सकने पकड़ हो जाती
0: जी बिल्कुल
1: है जी
0: पकड़ बना दी। हाँ जी
1: हाँ पकड़ बना दी तो हाँ जो भी मतलब ये करना चाहिए भी चलो कोई खरे जेड़े फल देने वाले बूटे हैं तो जो अपने आसे पासे लाइए
0: जी
1: कने मतलब कुछ ना कुछ करिए
0: बिल्कुल बिल्कुल और देखा अगर हाँ तुहां कुछ नहीं किते आ तो हाँ जो कल बहुत पछताना पौना कल के
1: बड़ा
0: हाँ जो
1: बहुत
0: आज ही
1: पछताना
0: पछताना पे
1: पड़ा।
0: आदा बरसाती चालू
1: हाँ जी
0: अपना रुद्र रूप दस दी तो फिर बड़ा हाल खराब हो जाता है ना
1: बस हर
0: है ना।
1: बरसाती हुंदा मैडम जी
0: हाँ
1: हर
0: जी
1: बरसाती हुंदा
0: हाँ जी हाँ
1: खेतियां बाड़ी
0: जी
1: रोड
0: बिल्कुल
1: बंद हो जांदियां है जी लोकां दे घर ढही जांदे जिहड़े कंडे कुंडे
0: जी
1: बड़े आने ना जे लगे हो
0: बिल्कुल
1: खड्डा खुड्डा दे बनाई लिया होते ना फिर सब
0: जी
1: टुटी जांदे
0: जी
1: कितने नुकसान हुंदा मैडम
0: बहुत ज़्यादा। शांति स्वरूप जी बहुत अच्छी गलबात तुहां सौगी साझा की और बहुत अच्छा संदेश तुहां दित्या बहुत बहुत धन्यवाद तुहां दा।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: जी बिल्कुल दरख्त लाने रुख लाने पेड़ पौधे लगाने अपना पर्यावरण हरा भरा बनाना अहाँ सिर्फ ये नहीं दिखना कि हिमाचल तो दिखा हरा भरा है ही अहाँ जो पेड़ पौधे लगाने की भला क्या जरूरत लेकिन अगर तो हाँ वैश्विक स्तर पर दिखन तब ही पेड़ पौधे जैसे बहुत बहुत घट हुआ दे जितना योगदान अं दे सकते उतना हाँ जो देना चाहिए लेंदे कार्यक्रम च अगली फोन कॉल। राम राम जी गलत संत च स्वागत है
2: हेलो राम जी
0: जी बहुत बहुत स्वागत कौन जनाब की थी
2: मैं देरे ते बोल रहा रोहित कुमार
0: जी देरे ते कौन
2: रोहित कुमार
0: रोहित जी जी रोहित क्या हाल चाल तुहां दे
2: मैम ठीक है मैम बहुत
0: जी चलिए बहुत अच्छा तो तुहां आज का विषय भी सुने होगा तो फिर अपने विचार साझा करा और थोड़ा जदि या तो तुहां रेडियो ते दूरी बनाई लिया या तो आवाज़ काट कर अपने रेडियो दी
2: जी मैम
0: जी
2: मैम मैं जेड़ा सब्जेक्ट तो विषय रखा बड़ा बड़ा बढ़िया विषय रखा मैम।
0: हाँ जी
2: ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਲਗਾਈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਕੱਟ ਮੈਂ
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪੇੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ
0: ਜੀ
2: ਕੰਟਰੋਲ
0: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗਰਮੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
0: ਔਰ ਦੇਖਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਜਾਲੂ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਪਰ ਧੁੱਪ ਭਣਕੀ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਪੇੜ ਰੀ ਛਾਇਆ ਚ ਜਾਲੂ ਹਾਂ ਖੜਾ ਇਤੇ ਲਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ
2: जी बिल्कुल
0: है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल बहुत अच्छी गल तुहां कीती पेड़ अहां भी काट लगा दे पेड़ लगांगे तहां जो गर्मियां ते भी राहत मिलनी और देखो जो ग्लोबल वार्मिंग रहा एक वैश्विक स्तर पर एक कितना बड़ा मुद्दा चल रहा ना आजकल ताती
2: बिल्कुल
0: सुबह। हाँ जी
2: मैं पर डे तो मनाए लेंदे पर डे मनाए के कोई फायदा नहीं है
0: बहुत अच्छी गल तुहां गलाई जी जी बिल्कुल
2: डे
0: बिल्कुल
2: मनाने फायदे हां एनवायरनमेंट जो जेड़ा आप रख के संभाल के
0: जी
2: फायदा
0: नहीं है बिल्कुल और एक दिवस एक पूरे साल च एक दिन मनाने री तो गल ही नहीं है हूँ समय है कुछ करने रहा है ना ता आज जो पूरी उम्मीद है रोहित जी तुहां भी पेड़ लगाने और रखा बखा तुहां और भी जागरूक करने दिखा ना आज जी
2: हाँ लगाए मैम बिल्कुल लगाए
0: जी जी
2: भला
0: क्या क्या पेड़ लगा रहे तुहां ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੇੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਵਾਲਾ?
2: ਮੈਂ ਅੰਬ ਦੇ ਆ
0: ਜੀ। ਅੰਬ ਆ ਰੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਫਲਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਫਲ ਵੀ ਖਾਣੇ ਜੋ ਮਿਲਣੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਛਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਣੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ। ਝਾਲੂ ਤੀ ਨਾ ਪੇੜਾਂ ਪਰ ਜੇ ਐਸੇ ਕੋਇਲ ਗੂੰਜਦੀ, ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ, ਜਾਂ ਪਕਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹਰੀ ਲਗਾਰੇ ਪੇੜਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਚਹਿਕਾਈ ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਕੂ ਕੂ ਕੂ ਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈ, ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਕਾਰਿਕਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਿਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਿਕਰਮ 'ਚ ਆਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਤਾ ਸੌਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ।

0: जी भाई, छोटा जिया बंगलू हो बखा भाई, छोटा जिया एक नाड़ू बगे, हरे भरे पेड़ हो तो और क्या नज़ारा चाहिंदा। और ए देन अहाँ दे पर्यावरण दी, अहाँ दे सच्चे पक्के मित्र दी, जिस दी गल बात आज अहाँ करा दे कार्यक्रम गल तुसां दी च। ता पीरी ते एक स्टूडियो अपना फोन नंबर दसी दे, स्टूडियोज़ का फोन नंबर 2212 हमीरपुर का एरिया कोड 0972। कर दे अगले श्रोता सौगी गलबात। राम राम जी, गल तुसां दी च स्वागत है।
1: राम राम मैडम जी।
0: राम राम जी, कौन की ते गला दे?
1: मैडम जी, मैं सरका घाट मंडी ते बोलया, गोपालपुर ते नागेंद्र सिंह नेगी
0: जी। नेगी जी, क्या हाल चाल तुहांदे?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया। बस पंचायत ते विच लग्या हा थोड़ा आचार संहिता
0: जी, जी
1: उस दौरान तुहाने
0: गलबात नहीं हुई। हां जी जी, चला फिर आज तुहां दस अपने विचार आज के विषय पर।
1: मैडम जी, बहुत अच्छा विषय है और

0: मतलब ए जे आधुनिकता कने विकास रे नौ पर जेड़ा 100-150 साल विच अहें पृथ्वी कने खास तौर पर पर्यावरण दा जेड़ा नुकसान कित्या तिस दी भरपाई मैं समझदा कि आने वाली पीढ़ियां जो भी करने पौनी जी। और पर्यावरण आज शायद मित्र रे बारे च तुसें बोलिया करदे
1: जी जी,
0: एक जीवन शैली बनाने पौनी अहां जो और ये रोज रोज जेड़ी रोजमर्रा जेड़ी जरूरतां तिस विच सुमार करने पौना
1: जी,
0: क्योंकि छोटी छोटी आदतां जे इसे पर्यावरण की रक्षा करने दा सीधा तरीका जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: इस विच मैडम जी जियां जे बहुत सारी चीजां जो अहें रीयूज कर सकदे, रीसाइकल कर सकदे, तिनारा पुनर्चक्रण कर सकदे, तिना जो कम कर सकदे, अपनी ये पृथ्वी जो सुरक्षित और हरा भरा रखने खातर बहुत बड़ा एक योगदान होना, एक सहयोग होना जी।
1: बहुत बहुत अच्छी गल तुहां गलाई दिखा, रीसाइकल रीयूज बहुत बढ़िया गल तुहां कीती। और वो अहां दे जो संसाधन है जो खत्म होने की कगारा परे या बहुत बहुत लंबा अरसा ले लैंदे तैयार होने वास्ते, उन्हां जो अहां थोड़ा जिहा टाइम देइए और कुछ ऐसे साधन उन्हां दे बदले च अहां यूज करिए जिससे यहाँ दी प्रकृति जो कोई नुकसान ना हो।
0: मैडम जी जी जे मतलब प्लास्टिक का बहिष्कार करिए जी,
1: जी।
0: पॉलीथीन पूरी तरह से उपयोग बंद करी कने खरीदारी कर दी बारी, अहे कपड़े कने जूट रे थैले बाजार लेके जा सकदे, पेड़ लगाना कने पेड़ा जो बचाना, पेड़ा की कटाई जो कम से कम करना, कने वैज्ञानिक आधार पर तीसरी खनन और तीसरी कटाई होनी चाहिए जी।
1: बहुत बढ़िया गल जी जी।
0: ऊर्जा की बचत करना जी, कमरे बिच नहीं है तो बिजली रे पखे कने दूजी जड़ी जरूरतमंद चीजा ही उपयोग बंद कर दिए जी।
1: बिल्कुल जी,
0: जल संरक्षण रा भी बहुत बड़ा योगदान है मैडम जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अपनाइए, कने जी ब्रश कर दी वारी दाली बना दी वारी नलका खुला रख दे से बड़ी गलत गल जी।
1: कने
0: कचरे का प्रबंधन करना जी, खाद बनाइए सूखे गिले कचरे दी, कने सूखे कचरे दी प्लास्टिक वगैरह धातु जी होंगी इस तरह रीसाइकल करी कने कबाड़ियां जो बेचिए और आय रा साधन भी बनाई सकदे जी।
1: बहुत बहुत बढ़िया गल्लां तुहां कीती नागेंद्र सिंह जी, एक एक उपाय तुहां बहुत ही फायदेमंद दस्से हां दे सारे श्रोतियां जो।
0: और पैदल चलिए, आज साइकिल दिवस भी है शायद
1: जी, बिल्कुल जी,
0: इस्तेमाल ज्यादा करिए कार साइकिल, मतलब पेट्रोल की भी बचत करने खातर प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान आ, सार्वजनिक परिवहन रा इस्तेमाल करिए। और एक ही गड्डिया विच अगर गांव वाले बंदे या नौकरी करने वाले कट्ठे ना जी, तिस जो बोलदे क्या बोलदे
1: पूलिंग, कार पूलिंग वगैरह,
0: हाँ कार पूलिंग वगैरह जी, इस तरह रा इस्तेमाल करी कने आहे बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण जो बचाने खातर करी सकदे जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गल बात तुहां कीती नागेंद्र सिंह नेगी जी, बहुमूल्य विचार देने वास्ते तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार मैडम जी।
1: जी बिल्कुल, लहा दे श्रोता सोला ने ठीक गल गला दे, सच गला दे कि गल्लां करी ने कुछ नहीं होना, हुण समय करने दा, और करने जो अहां इंसान जो है अहां बुद्धिजीवी इंसान है अहां क्या नहीं करी सकदे, तका अहें दुए पासे मतलब नकारात्मकता की तरफ अहां जा दे कहानी अहां सकारात्मकता अपना दे। जो अहां दे हुण श्रोता जे थे जिन्हां बड़ी अच्छी गलबातां कीतियां, बड़े अच्छे उपाय दसे, तो आवा थोड़ा थोड़ा करने उन्हां वास्ते अहां हाथ बढ़ाइए और इन्हां फायदियां जो अहां अपने जीवन च उतारीए कने पर्यावरण जो हरा भरा सुरक्षित बनाइए। राम राम जी जी। इन्हां श्रोतियां सोगी गलबात नहीं होई पाई यहां दी, तां कार्यक्रम मैं गल तुसां दी कने एक कार्यक्रम तुहां सुन दे सिर्फ कने सिर्फ दे भूमि दी सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर ते एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। राम राम जी।
2: राम राम जी, मैं रामपाल शर्मा बोल रहा जी, सेरी प्राग पड़ते
1: जी। रामपाल जी बहुत बहुत स्वागत तुहां दा,
2: धन्यवाद जी।
1: जी ताज के विषय पर तुहां भी अपने बहुमूल्य विचार दसा सारे श्रोतियां जो, कने क्या क्या तुहां कर दे, क्या क्या करी सकदे हां।
2: देखा जी गल है, एक तां सां बड़ी बार आजकल पेड़ां दा कटान बड़ा भारी ज्यादा करा कर दे
1: जी,
2: हां ते तीसरा चीजा च ए हुंदा वी आदमी कोशिश करे जे अगर मजबूरी कोई पुराना पेड़ होई गया कटना पई गया तां तिस हिसाबे कन्ने जेड़ा आदमी ए करे ते जी तिना पेड़ां जो और नवे लगाने की कोशिश करे, असा भी रखे सिस्टम भी कदी पीपल अंब वगैरह लगाते
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: कने पर्यावरण दा जी हुण प्रधानमंत्री जी बोला करदे कि जी देश दी बाहरले देशां लड़ाइयां लगियां ते इस विच आर्थिक स्थिति ने मतलब ए कि हां, ते मैं बोलदा इस सब ते वधिया इलाज है जी बसां चलियां ने, बसां च जा
1: चाहे
2: कहां अपना परिवार भी मजबूत।

0: करना, खर्चा घट होना ते पैसे बचने, कन्नै होर जरूरतां ख्वाहिशां पूरियां करी सकदे, कन्नै नाने दा पर्यावरण च भी काफी अच्छा सुधार।
1: बहुत अच्छी गल बात तुहां कीती, तुहां पेड़ कटाई बारे गल कीती। रामपाल जी, हाँ अपने अखा बखा देख दे कि 20-30 या 40 सालों के अंदर अंदर ना अहाँ दी हिमाचल दी वादियां जो अहाँ दी मतलब पहाड़ियां थी सभी कितनी कटी गई है ना, कटी कटी के हकार बना दे, मकान बना दे, दुकान बना दे, इस छवि अहाँ हिमाचल दी थोड़ी जी बदलोआ दी तस्वीर तकी अहाँ जो वापस जी ऐसे पूरा हरा भरा हिमाचल बनाई सकते।
0: जियां जी असां अगर अपने घर दे अग्गे छोटे छोटे जियां जी अंब वगैरा बूटे कोई लगा, क्योंकि हुण फसलां तां इह नहीं हो गईआं ना क्योंकि जंगली जानवर भी नहीं होने दिंदे, तां जे बूटे बट्टे जिहड़े अगर इस तरीके नाल लगाए जाण
1: जी,
0: पेड़ बूटे अंब वगैरा होर फलां दे नहीं है सुधार करन या जाला कन्नै करन,
1: बिल्कुल फलदार पौधे लगा। और देखा आहा तो नहीं खाते फल, चलो पक्षी आंदे सब भी खाते है ना, तो कितनी खुशी होंगी कि देखा ही नजर भी जाग लग्या है ना जी। बहुत अच्छी गल बात तुहां कीती रामपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहां दा।
0: बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद
1: जी। बिल्कुल अहां दे श्रोता बहुत समझदार और बहुत ही अच्छी गल्लां बातां सौगी करा दे। और देखा ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसो अहाँ हल नहीं कर सकते, पर हाँ करना नहीं चाहते वह गल बखरी है। तो अहाँ जो एक दुए का हाथ मिलाना हाँ अगे बढ़ना, क्योंकि कुछ काम ऐसे होंगे जो एक समाज जो मतलब समाज की मांग करते, एक कला जना नहीं कर सकता, तो अपने पर्यावरण क्योंकि सभी का मित्र है, तो अहाँ सभी जो भी अगे आना चाहिए आना पाना, तो ही अपने इस पर्यावरण की रक्षा कर सकते और ही पर्यावरण अहाँ की रक्षा कर सकता। राम राम जी, गलत संधि च स्वागत है।
2: राम राम जी,
1: जी कौन गला दे किता ते?
2: हां जी हां जी, कांगड़े ते बोला दे जी।
1: कांगड़े ते केड़ी जगह ते जी?
2: हां जी जहानाबाद जी।
1: जी क्या नाम तुहांदा?
2: नाम सुनीता।
1: सुनीता जी, जी तो फिर तुहां भी आज का विषय सुनिया होगा। सुनीता जी दसा अपने बहुमूल्य विचार।
2: हां जी, तो ये है कि देखो पर्यावरण को बचाने ताई बच्चे क्या सारे नौजवान अगे होना चाहिदा जी।
1: जी
2: हां जी, तां पर्यावरण कन्ने साडा अगे बच्चेयां दा भी साडा भी भविष्य जुड़िया जी।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी गल गलाई तू। हां जी,
2: तां जो बताने चाहे जितना हो सके बच्चे होन बड़े होन सारे बड़ी चढ़ी के भाग लेना चाहिदा जी।
1: जी
2: हां जी, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ताकि धरती है जो हरा भरा रखी सके ना, अपनी आने वाली पीढ़ी है जो हां बचाई
1: कुछ देख नहीं जान, मतलब वहाँ श्राप नहीं देने जान, हाँ बरदान देने जान। हाँ
2: कुछ ना कुछ
1: देख के कितने पौधे लगाते हैं पहल के सियाने पहल के बुजुर्ग खेतों च जा तो हाँ अपने रुटियां च जा, तो कितना कुछ भी लगाते हैं है ना, कने उन्हें चीज
2: लगाया फल फ्रूट अज ते कोई 70-80 साल पहले सुनते हाँ अपनी बुजुर्गों से अज ते दा फल खा कर दे
1: खाई कर दे, कने कितने देखा कितने मुद्दत अगे तक अभी खाने है ना।
2: हाँ जी खाने जी, सारा भी यही ड्यूटी बन दे भी यहाँ भी कुछ ना कुछ अपने होने वाली पीढ़ी ताई कुछ करी के जान जी।
1: जी बहुत अच्छी गल बात की थी सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहांदा।
2: धन्यवाद धन्यवाद
1: जी। चला इन्हें ही अच्छी अच्छी गल्लां बातां सौगी सौगी हुण अहां तुहां जो एक प्यारा जिहा लोक गीत सुनाणा, सैर कराणी शिमले दी सड़कां दी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोतियो, पेड़े तकाला कने पेड़े ताई जाला कने जाला ताई जीवना कने जीवना ताई भविष्य कार्यक्रम में गल तुसांदी लाइफ ऑन इन ए कार्यक्रम में आधे स्टूडियोज का फोन नंबर 2232 कने हमीरपुर दा एरिया कोड 01972। राम राम जी, गल तुसांदी च स्वागत है।
4: हां जी नमस्कार जी।
3: जी नमस्ते जी, कौन कीती ते?
4: मैं विजय कौशल बोलदा, पालमपुर राजपुर ते।
3: जी क्या हाल चाल विजय जी?
4: बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है, बहुत मौज है मालिक दी, तुहांदा भी बड़ा आशीर्वाद है।
3: जी चलिए, आशीर्वाद भगवान दा सारियां जोड़े ही चाहिंदा। तां अज के विषय पर तुहां अज विचार साझा करा अपने।
4: हां अगले कल है ना ये पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दा तां भावे है वही पर्यावरण दा अनेक चीजां है।
3: जी बिल्कुल,
4: जिन्हां दी अज साफ संभाल करने दी जरूरत है।
3: हां जी,
4: इन्हां चीजां जो करी दे ना, मतलब नहीं तो स्पष्ट से गौर नहीं करा दे ना, कने पर्यावरण दूषित हो गया इससे ना।
3: बिल्कुल जी,
4: आने वाली पीढ़ियां ताई भी कने आहां दा जितना के जीवन आहां ताई भी कोई सुखदायक नहीं है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: ये इस जीवन जो सुगम बनाना है, इस जीवन जो सरल बनाना है, कने अच्छे तरीके ने जीना है, तो ये पर्यावरण जो संभालना आहां दी जिम्मेवारी है। आहां एक व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिम्मेवारी मनी लैन ना जी।
3: जी बिल्कुल,
4: हर इंसान की कोई ये नहीं है भाई सरकार ही कर गई कि प्रधान ही करके कि वो ही करके सो हर इंसान
3: बिल्कुल
4: इंडिविजुअल बनना मनी लिया अपने मन च भाई मैं गंद नहीं पाना, मैं प्रकृति की रक्षा करनी है, मैं पानी की रक्षा करनी है, मैं पेड़ पौधे बचाने हैं, मैं पेड़ पौधे लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी।
3: बहुत अच्छी गल तुहां कीती कि एक एक इंसान जरूरी है, एक एक जियां बोलदे ना भाई नागरिक जरूरी है, अगर वो शुरुआत करी दे तो समाज तां पू अगे वधी जाणा है ना।
4: जी जी जी जी
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, हां जी अगे आने पौना, और नहीं तो पछताना पौना फिर ना, और आज भी पछता दे हां
4: जी। होना दिखा ना इस वेले यहां खज्जल तो होवे दिखा कर दे हां कितनी प्राकृतिक घटना घटा दी जेड़ी है पहले नहीं होंदी
3: नहीं होंदियां थी। हां कुछ अरसा पहले दिखा जाए, हां हां दे कई बुजुर्ग ऐसे ऐसे बोल रहे भी इस तरह ने तबाही तो तिना पहले नहीं दिखी हुई है ना।
4: ना ना ना ना ना दिखा ना जी, बुजुर्ग इतना पता होता कलांदे है वो पुराने परिविष्ट बत्तर होनी है तो आई आंदी
3: आई आंदी थी। बिल्कुल बिल्कुल,
4: कैलकुलेशन थी ना जी, कने तदी पर्यावरण जो बड़ा स्पष्ट रखा था, बड़ा साफ रखा है ना।
3: बिल्कुल जी,
4: कने हां थोड़ा जे अवेयर नहीं हो दे ना जी, ते इंडिविजुअल बन जो अवेयर होना पौना हर इंसान जे
3: तो फिर अहां जो भी अगे बधने पौना, और अहां जो भी अपने बुजुर्गां रे गलाए पर अगे चलने पौना है ना।
4: बहुत एग्जांपल दिंदा हां दी, इह तो कुल्ला हुंदी सी ना कुल्ला।
3: हां जी हां जी,
4: बिल्कुल,
3: और पानी इतनी गंदगी, मतलब इतना वहां पे प्लास्टिक होया, इतने कूड़ा करकट होया, भी जानवर भी पानी पीने वास्ते बेचारे है ना, पशु जानवर हां तिना दे भी हाल खराब है। तो बड़ी बारी मतलब एक इं बोलिए तो बड़ी बारी गहरी कने गंभीर समस्या आई, और हल भी कुछ गया, हल भी यहाँ तो हाँ गई आया है ना। भुगतान तो शुरू हो ही गया भुगतना जो आ जो, लेकिन ये की संभले नहीं होने तो फिर बड़ी बार देर भी जानी। जी विजय जी बहुत अच्छी गल बात तुहां कीती हां सौगी, बड़ा अच्छा लगया, बहुत बहुत धन्यवाद तुहांदा।
4: धन्यवाद जी, धन्यवाद
3: जी। बिल्कुल दिखा, पेड़ पौधे नदियां ही पहाड़े पशु ए पक्षी ए है ना, ये अहां दे पर्यावरण दा अभिन्न अंग ए। तां ए जीवन सिर्फ अहां दा जीवन ए ही नहीं है, या ए पर्यावरण सिर्फ अहां दा ही नहीं है, इस पर्यावरण जो सारे साझा बंडी कर दे, तां अहां जो कुने हक दिते आ भी इस पर्यावरण जो हाँ दूषित करिए, दूषित तो दूषित पर हाँ इसो इतना खराब करी दिए, इतना गंदगी अहाँ पाइए कि भई अहाँ अपने ही प्राण वायु जैसे जे अहाँ जो हरे भरे पेड़ दिया दे उसो हाँ दूषित करी दिया खुद ही, तो बड़ा काम खराब हो जाना और बहुत ही सोचने वाली ये गल है, बहुत ही गंभीर समस्या है। तो हाँ जो दसीए गल तो सा कार्यक्रम इस समय तो हाँ सुना कर दे आकाशवाणी हमीरपुर से FM बैंड 101.8 MHz पर। आहां दे स्टूडियोज दा फोन नंबर 2232 हमीरपुर दा एरिया कोड 0972। तभे तुहां भी फोन मिलावा और इस विषय पर अपने बहुमूल्य विचार जैसे साझा करा।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: राम राम जी, कल तो संदेश स्वागत है जी। तुम्हारा फोन नंबर लगी चुके हैं, तुम गलाई सकते जी। अहाँ दे कुछ श्रोता ऐसे उन्दे शर्मिले बई फोन लगी जां तां से गलांदे नहीं, गलाई नहीं पांदे कने फोन कटी दें। दिखा आकाशवाणी हमीरपुर दा बहुत बहुमूल्य समय हुंदा लाइव फोन इन प्रोग्राम दा, कितने ही श्रोता अहाँ दे दोस्त जैसे फोन मिला दे हुंदे और अगर किस्मता ने तुहां दा फोन लगी जाना तो तुहां जरूर अहाँ सौगी गलबात करी सकदे बिना किसी भी देरी ते दे।

जी दोस्तों, दिखा भी अहाँ दा हरा भरा पर्यावरण, इतना प्यारा जिया पर्यावरण है ना, ता अहाँ दी धरती माँ जी ए भी यही पुकार करा कर दी कि हरा भरा हो परिवार, कने हर एक पौधा जिया से इया हरियाली भरा हुए, हर इंसान जिया अगर एक एक पौधा भी लगाएं ता भी अहाँ दा ये जो पर्यावरण है, ये जो विश्व है, ये कितना सुंदर बनी जा। ता आवा अहाँ तुहा भी आगे बधिए, अहाँ भी सिर्फ पर्यावरण पर गलबात ना करिए, अहाँ भी हुण कुछ करी के दसीए, कने अहाँ भी अपने पर्यावरण सौगी सच्ची मित्रता निभाइए। तभी हुण तुहां जो सुना दिंदे एक प्यारा जिया लोक गीत।

0: पर्यावरण का ध्यान रखी कने चलिए। तो अजय जी अज के प्रोग्राम च बस इतनी गलबात तुहां सौगी हो सकनी क्योंकि कार्यक्रम का समय भी उत्थे पूरा हुआ था। जी धन्यवाद जी। तभी ये था आज का कार्यक्रम गलत संधि और अहाँ का यही संदेश अहाँ की यही कोशिश कि पर्यावरण बहुत हरा भरा बनाना पर्यावरण दी अहाँ अच्छे मित्र बनना दुश्मन नहीं बनना अहाँ सारे दी है बस यही पुकार हरा भरा हो ए संसार। इसी संदेशा सौगी आज के इस कार्यक्रम जो संपन्न करने दी अपनी दोस्त पूजा शर्मा जो दिया अनुमति नमस्कार राम राम।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बज चुके हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आम जन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सोलन में पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य HRTC को मजबूती प्रदान करने के साथ ही राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देना है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई हैं और इसमें 32 आरामदायक सीटों के साथ सामान रखने का भी उचित प्रबंध होगा। उन्होंने कहा कि बसों के लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन ई बसों के रूट ट्रायल का कार्य पूरा हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां व वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते जनता ने चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव नतीजे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप है और भाजपा आगामी चुनाव में एक तरफा जीत हासिल।
1: जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो जनमत को खो चुकी है और ये जो जीत का क्रम है अब ये रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आगे अब 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि जो अभी पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो ग्राउंड रूट का जो कार्यकर्ता है या धरातल के ऊपर जो आम जनमानस है वो इस बात को समझ चुका है कि हमारा जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है और प्रदेश में अपनी सरकार।
0: कांगड़ा जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों सहित विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण व शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। हेमराज बैरवा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में आम जनमानस 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी स्वगणना अभियान आरंभ किया गया है। हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने पर एक स्वगणना ID प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान भी किया। कुल्लू जिले में रेबीज के मामलों को कम करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने व नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करना और इनके द्वारा लोगों को काटने के मामलों में कमी लाना है। एक रिपोर्ट।
2: कुल्लू जिला में रेबीज के मामलों को कम करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पहल जारी करते हुए मुहिम चलाई गई है। पशुपालन विभाग ने पिछले 5 माह के दौरान 4,416 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा 224 लावारिस कुत्तों की नसबंदी भी की गई है। विभाग ने वैक्सीनेशन और नसबंदी का कार्यक्रम जारी रखा है ताकि कुत्तों के काटने तथा सड़कों पर उनकी बढ़ती संख्या के मामलों में कमी लाई जा सके। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला में पशु चिकित्सालय माहौल के अलावा मनाली, रायसन व बंजार चिकित्सालय को इस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिला के हर क्षेत्र में पालतू और लावारिस कुत्तों के नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि रेबीज की बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में आगामी 8 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने आज से 6 जून तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर बारिश, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा व चोटियों पर हुए हिमपात से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर मैदानी व निचले क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं, आपसे लेकर दिन में 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गज़ल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गज़ल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ में, एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गज़ल्स एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराज़े गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। यह है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज़ में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज़ में सूरज सनीम के बोल और ललित सेन के संगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8।

0: कार्यक्रम महिला जगत लई कने मैं हाजिर तुहांदी रेडियो सखी शिवाली कने आज मेरी सौगी है न
1: तुहांदी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा
0: जी। पूजा जी कने स्वागत कर दे अपनी सारी बहनी दा इस कार्यक्रम च कने बोल दे तिना जो प्यार भरी नमस्कार।
1: दिखा भई बुधवार हो कने भई आहा दी सहेलियां जो ता काली कहनी होनी पला तिना दे पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है महिला जगत, क्योंकि ये कार्यक्रम बुधवार जो उंदा आहा दी अपनी प्यारी जई मिठी जई अपनी लोक बोली च कने मिठे मिठे आहा लोक गीत उन वास्ते लई कने आउंदे कने ढेर सारी गल्लां बातां अपनी सखियां सहेलियां सौगी सांझा करदे।
0: बिल्कुल कने देखा पूजा इस कार्यक्रम दा आहा आगाज कर दे कने देखा इस चाहां लई कने आउंदे ढेर सारी जानकारियां अपनी बहनी वास्ते है ना, बहनी वास्ते कि अपने सारे श्रोताओं वास्ते। कने देखा जी इस कार्यक्रम च अहां दा यही उद्देश्य रहंदा कि जेड़ी भी अहां गलबात अपनी बहनी कने साझा करनी तिना दा तिना जी असें जरूर तिस जो सुनना कने तिस दा जो अनुसरण करना।
1: बिल्कुल दिखा भई ना इज जीवन ना यहाँ दा बड़ा अनमोल है, ईश्वर दी दित्ती देन है ना। तभी यहाँ दी महिला जो ई जो घृणियां ई या तो फिर कामकाजी यहाँ दी महिला ना से अपने घर जो स्वर्ग भी बनांदी, सारा कार काम कारभार भी संभाल दी है ना। कने भई दिखे जांदा ता भई एक ही टीचर ते काट नहीं हुंदी एक महिला, क्योंकि चाहे गल रसोई दी चाहे गल क्यारियां दी खेती बाड़ी दी अपने घर दी साफ सफाई दी या कोई मेहमानबाजी हो दी है ना, ता भई इं नहीं करना उआ करना ए नहीं बनाना ए बनाना ते इतना कर हक तहां दी सहेलियां रख दी।
0: बिल्कुल रख दी कने जरूर तिना दा बनदा क्योंकि एक घर जो चलाना जी ऐसा इतना आसान नहीं हुंदा। मुझे तो लगदा पूजा किते ना किते की बाहर काम करने ते ज्यादा मुश्किल है घर काम करना का इस पूरे परिवार जो जी ऐसे एक जोड़ी करने रखना का तिस जो संभाली करने रखना।
1: सही बात बहुत मैं तुहां ते सहमत कर दी शिवाली, क्योंकि सारियां जो खुश रखना सारियां दी मनना सारियां जो मनाना बहुत बड़ा मैं बोली सके कि चैलेंज है ना।
0: बिल्कुल हां जी कने देखा ये चैलेंज ता हां दियां सखियां जी ऐसे स्वीकार कर दियां कने अपना दियां तिस जो अपने जीवन च। कने देखा आहा देखा आज है लेई कने आए गल करनी कि जेडे आहा दे देखा देश प्रदेश च जेड़े हां दे हेल्पलाइन नंबर हैं जेड़ी जी समस्याएं ते जुड़े कोई भी जेड़े नंबर हैं उन्होंने बारे च अहां अज अपनी सखियां जो दसना, क्योंकि देखा नंबर तो होंदे छोटे छोटे लेकिन कई बार हां दे दिमाग ते निकली आंदे हां जो याद नहीं रहंदे।
1: बिल्कुल है ना। और हां जीवन दी गल कीती शिवाली तो इस जीवन च काली जी अहां जो क्या जरूरत पई आनी कोई नहीं पता है ना, तो कुछ एक ऐसे नंबर हां अज अपनी सखियां सहेलियां जो दसने जो ना जो भई इया बोलदे ना ऑन टिप्स याद होना चाहिए तभी अहां दी सहेलियां जे सही अता अपना मोबाइल फोन ना डायल कर सकता है इन्हें नंबर जो सेव करने रखी लिया या तभी एक डायरी लिया छोटी जी कॉपी लिया पेन लिया कि भाई इन नंबर जो तुहां जरूर जरूर करने नोट करके रखी लिया।
0: बिल्कुल
1: बड़े काम दी जानकारी आ जहां तुहां वास्ते लेई कने आए रे सांझा करने लगे ते ध्यान कने सुनना
0: जी। कने देखा पहले आ गल करिए गुड़िया हेल्पलाइन नंबर दी ता ए नंबर आ 1515 कने वुमेन हेल्पलाइन दी नंबर है 1091 कने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 कने मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है हाँ 102 कने 108
1: जी। ता ए नंबर जी से तुहां नोट करी कने रखने कने उना हां तुहां जो और भी महत्वपूर्ण नंबर दसने जो तुहां जो पता होना चाहिए बड़ा जरूरी है। देखा भई बरसात आने वाली है थोड़े दिनों च है ना कने आहां जो बड़ी इतरासदी दा सामना करने पौंदा ता आहां गल करनी भूकंप दे बारे च यानी कि अर्थक्वेक हेल्पलाइन नंबर जो ऐसे आहां दी बहनी नोट करना 1092 नैचुरल डिजास्टर आहां दा कंट्रोल रूम दा नंबर है 1096 कने अगर कोई अहां दा ऐसी अहां दी सहेली है जो जान दी कुसी जो व्यक्ति जो या कुसी किसी इंसान ना जो एड्स ते ग्रसित है तो देखा एड्स हेल्पलाइन नंबर भी अहां दी सरकार ने यहां जो दित्या है से है 1097।
0: बिल्कुल कने देखा जी अगले नंबर दी अहें गल करिए ता जी हां जी तुहां डिजास्टर मैनेजमेंट टोल फ्री नंबर दी भी अगर अहां दसीए ता ए नंबर है 1077 कने साइबर क्राइम पर अगर तुहे तुहांजे लगदा कि कोई क्राइम होआ दा साइबर क्राइम तुहां सौगी होआ दा ता ओ नंबर भी तुहे डायल कर सकदे 0177-2620-331 कने 1930 कन्नै फायर दा नंबर है हां दा 101 मुझे लगदा पूजा ए नंबर ता देखा सारे जो है ना पता होना चाहिदा कन्नै हुंदा भी कन्नै पुलिस हेल्पलाइन नंबर जी ऐसा या 100 कन्नै 112
1: जी तबे बिल्कुल भी ये नंबर बड़े ही महत्वपूर्ण है 100 जिया तुहा दस्या शिवाली पुलिस हेल्पलाइन नंबर कने अगर फायर ते बचना तुहा आग देखा आजकल कितनी घटना ऐसी घटा दी गर्मियां दे दिना विच पे कुती भी सुनने च आदा भी आग लगेगी है ना ਤਾਂ 101 ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੈ 102 ਕਿਨੇ 108
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਹੈ ਨਾ ਕਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 103
0: ਬਿਲਕੁਲ ਕਨੇ ਦੇਖਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਤਾ ਹੋਗੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਇਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 1031 ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 1033 ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 104 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਔਨ ਵੀਲਸ ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲਸ 'ਚ ਅਗਰ ਵੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 104
1: ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੰਬਰ ਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਹਾਂ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾ ਡਾਇਲ ਕਰਨੇ ਰੱਖੀ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਔਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪੋ ਵੀ ਸੁਣਨਾ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस छोटे जी अंतराला ते बाद एक बारी फिर ते स्वागत कर दे तुहां दा कार्यक्रम महिला जग च। कन देखा हाँ, पहले गल कीती कुछ हेल्पलाइन नंबरां दी, कने पूजा देखा हूँ हाँ गल करनी अज दा जिहड़ा विषय आ, अज दा जिहड़ा हाँ देखा दे इस दौर च कि नशा जी ऐसे सबसे ज्यादा जी ऐसे बढ़ी गया।
4: बिल्कुल, मतलब इं बोली सकते कि अहां दे समाज जो खोखला करा दा
3: जी,
4: अहां दे समाज दी, अहां दे घर परिवार दी खुशियां जो बर्बाद करी दिंदा इन नशा।
3: बिल्कुल,
4: कने दिखने च भी आदा शिवाली, दिखा जीवन कितना बहुमूल्य है ना।
3: हां जी,
4: कितना अनमोल तोहफा ईश्वर ने अहां जो प्रदान किते है, अहां जो कितना खूबसूरत जीवन, अहां दे सगे संबंधी, अहां दे घर वाले, अहां दे बच्चे, अहां दे परिवार है ना। लेकिन एक ऐसी इं बोली सकते कि एक ऐसा जड़ जो धीरे धीरे धीरे धीरे ये जो खुशियां दा परिवार दा जो एक पेड़ है ना, इसो ही खराब करी दिंदा।
3: बिल्कुल खराब करा दा। कने देखा पूजा है, देखा दे आजकल ता देखा, मतलब चलो जड़े जी एक मध्यम एज चैनो ता एनी है ना, जड़े जी छोटे ते छोटे बच्चे हैं ना, कने कुछ देखा है जो सुनने से भी एड़ा आंदा कि महिलाएं भी इस विच जी ऐसे पाई जा दिया, मतलब ये नशा, मतलब वहां देखा दे कि कितना लोगों जो खराब करा दा, कितनी तरह दी जिंदगी जो बर्बाद करा दा, कितने लोगों दे घर बर्बाद करी ते घर मिटाई दिते इन्हीं नशे करने है ना।
4: और नशे दा प्रभाव सिर्फ शारीरिक तौर पर ही तनी पया दा, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर है ना, आर्थिक तौर पर, कौन जी ऐसा पहलू है जो नशा जी है जिसो छुआ दा कने से खराब बर्बाद नहीं हुआ दा। तभी अहां आज इस कार्यक्रम दे माध्यम से अहां अपनी सारी बहनी जो ये जागरूकता देनी भी अप्पू भी जागरूक होना, औरें जो भी जागरूक करना,
3: बिल्कुल
4: इस जहरा ते बचना, औरें जो भी बचाना।
3: जी, कने देखा गांव च देखा जी महिला मंडल बने हुंदे है ना, हर गांव च देखा जी कोई समूह बना दे, कोई कुछ बना दे, तो उदे च भी देखा महिला मंडल च नशा मुक्ति दा अभियान दा एक उद्देश्य जिस समाज वास्ते नशे दी रोकथाम करना बड़ा जरूरी आ। कनिष्ठ देखा हां दी महिलाओं जो भी जागरूक करना, तिना दे जेड़े प्रभावित परिवार हन तिना नूं सहायता प्रदान करना, कने महिला मंडल जियां नुक्कड़ होई गए नाटक शिविर लगा दे सरकार, मतलब कई सारे इन्होंने दौरान इन्होंने माध्यम करने हैं जी ऐसे लोगों जो जागरूक करा दी है ना, कने नशा मुक्ति भारत अभियान जी ऐसे इदे माध्यम ते भी जागरूकता फैला दा या कि अगर तुहांदे आस पास अगर तुहांदे परिवार च अगर कोई एड़ा है तो तुसीं इसजो रोकी सकदे, नशा मुक्ति केंद्र च तुसीं लिया सकदे, कने इह चीजां ते तुहां इसजो मुक्त कर सकदे।
4: बिल्कुल, पहले तो शुरुआत दिखा थोड़े थोड़े छोटे छोटे इं बोली सकदे ना भी अहां छोटे छोटे काम करें ही करी सका है
3: जी,
4: अहां उन्हां जो एकदम प्रेशर नहीं पाना। दिखा बोलना है ना, अगर कोई लत लगी गिरी ना शिवाली तो एकदम तह नहीं छुट दी
3: जी
4: है ना। मुश्किल हुआ एक इंसान वास्ते भी वो चीज़ा छड़ना और एकदम छड़ना तो और भी मुश्किल हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ने धीरे धीरे अहाँ तिना जो इं बोलिए ना पे सहयोग करिए, तिना जो हाँ बुरा भला नहीं बोलिए, उन्हें जो हाँ एकदम प्रेशर बोलिए ना भी बड़ा भरी दबाव नहीं पाइए, धीरे धीरे जे ऐसे सारे परिवार रे जन जे सतीना जो सहयोग दे सका है। अगर हाँ जरूरत एड़ी लगे रहे भी नहीं हूँ गल बहुत बधी चुकी है जो जे ऐसे नशा निवारण केंद्र की तरफ रुख करना चाहिए।
3: बिल्कुल, कन देखा इस दे जागरूकता वास्ते कई सारे शिक्षा कार्यक्रम जी ऐसे भी चलाए जा रहे हैं है ना, कने विशेष कार्यशालाएं हो दियां, मैं पहले भी गल की कि जी गांव च महिला मंडल है ना कोई समूह है तिना च जाई कने नाटक जिया नाटक दे जरिए लोगों को समझा दे, कने महिला जो जागरूक करने वास्ते जड़े विशेषज्ञ डॉक्टर हैं मनोविज्ञानिक हैं तिना जो सदी कने नशे दे केड़े केड़े शारीरिक मानसिक दुष्प्रभाव जड़े होवा दे उन्हां दे बारे च जी ऐसे जागरूक होवा करा दे लोगां जो है ना, कने
4: कने शिवाली ए भी है भी दिखा ना अहाँ दी बहनी लगी रही सारा दिन कम्मा अच्छा अजकल मनिया बच्चे जी बच्चे रे पेपर लगे एग्जाम लगी रहे तो बड़ी देर तक बच्चा पढ़ा दा अपने कमरे च बैठी के तो दिखा भाई अहारी बहनी दी ए भी जरूरी मतलब ये बोली सकते भाई फर्ज ही बोला तू हाँ या कर्तव्य बोली लिया ना ये ड्यूटी बनती कि भाई से बच्चा चेक करना भी से कितने घंटे पढ़े रहा अगर से अधी अधी राती तक बैठे कने पढ़े रहा तो कोई ऐसी गलता नहीं जो तुहां ते छुपी गिरी है ना कि भाई से चोरी छुपे कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं लगी गिरा करने इस्तेमाल करे रहा ना तो तीसरा भी थोड़ा जे पूछ पछाण करते रहना पूछ गिण करते रहना तीन दे कमरे च थोड़े थोड़े अंतराले ते बाद जाना किताबा भी तीसरियां देखनियां आप तीसरे बैग वगैरह भी देखने कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है कमरे च जो नहीं होना चाहिए
3: कने देखा पूजा एक होर गल थी कि ये भी जरूर तिना पर नजर रखनी कि लोगों के संपर्क से आवा दा के किस तरह के दोस्त उन्हें बनाए हुए कि लोगों ने मिलता जुलता किसने गल करा दा फोन पर किसने किस प्रकार की गल करा दा तो देखा एक माँ बाप का यह देखा फर्ज बनता कि अपने बच्चों पर उसे पूरे तरीके कन्ने नजर रखी सकते हैं ताकि तिना का बच्चा समय रेंदे संभली
4: जाए कि नहीं बिल्कुल देखे इतनी मेहनत करनी इतने खर्चे करने है ना और अगर बच्चा ठीक ढंग ने कामयाब हो ठीक अहदे पर पहुंची जाए तो भाई और क्या चाहिए
3: बिल्कुल कहने देखा इस एक होर मैं थोड़ा दसा तो महिला मंडल स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां भी अजकल बना दी हैं हाँ जी कहने जड़ी युवाओं कहने हाँ किशोर की गतिविधियां पर नजर रखी सकते हैं एक प्रहरी क्लब का गठन इस दो बोली सकते इसका नाम है प्रहरी तो मतलब कि गाँव च भी देखा कितने हूं लोग जी इसे जागरूक होवा दे
4: तो मुझे लगा शिवाली बहुत अच्छी गल है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो अहो नहीं पता भी यहाँ पर चेक रखे रहा है ना
3: जी
4: तब ही कितने बच्चे जे ऐसे बिगड़ने ते बची सका है और कितने कर रहे सजे मतलब बर्बाद होने ते
3: बची सकते बिल्कुल कन देखा घर जाए करने तो है महिलाओं जी से अपने बच्चों पर नजर रखने वास्ते और जो भी प्रेरित करन कने एक सुरक्षित माहौल जी ऐसा भी जरूर बनाना है
4: जी
3: कने इस देखा नशा मुक्ति हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर दी भी गल करिए ता ए नंबर है 1446
4: जी तब ये बहनी यहाँ दाई नंबर भी नोट करी लेना भैया जी
3: मतलब 1446
4: जी
3: ए नंबर है ता इस जो भी नोट कर लेना अगर तुहां जो लगदा कि कोई एड़ी गल है तो तुरंत अपनी सहायता वास्ते इस टोल फ्री नंबर पर जी से
4: 1446 करे गल शिवाली अपने बच्चे दी नहीं है अहां दे घर परिवार अहां दे मोहल्ले च अहां दे गांवां च अगर कोई बच्चा ऐसा तुहां लगा ना तुहां उस दे बारे च भी जानकारी दे ही सकदे ताकि किसी दा भविष्य जे ऐसे अच्छा रहे अच्छा बने
3: बिल्कुल
4: हां जी
3: ता पूजा मुझे लगदा कि एक छोटा जिहा अंतराल अहां इथे लेना कने उस दे बाद हां सुनाना अपनी बहनी
4: प्यारा जिया लोकगीत
3: जी
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम।

0: ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: ले अभी तो लोकगीता दे माध्यम ने अहाँ भी सैर करी ली न पाड़ा री बांके बांके छल छल पाड़ा री और जो रौनक अहाँ दे पाड़ा च है से रौनक और कुती भी नी है
1: जी
0: कि से जी रौनक शिवाली हाँ दे गाँव च लगती ना सभी भी अपनी रौनक है ना
1: बिल्कुल ए रौनक हाँ देखा इन्हें ही बरकरार रहन कने ये लोग जी ऐसे हंसी मिली कने गलाई लेने देखा रौनक हूँ वही ने टिया जी जी देखा हूँ ही आ दे इलेक्शन हो है ना तो कितनी रौनक देखा चारों तरफ लगी है
0: यहाँ ये भी हैरानी शिवाली की इस बार तो भाई यहाँ दी महिला जो सहेलियां ही है ना तीन तो कमाल ही करी था
1: बिल्कुल देखा हाँ ये महिला बोल देना की कोई भी एड़ा क्षेत्र नहीं तिथि जीतने अपना परचम नहीं लहराना कने देखा उन एक लगता कि ए बचे हा तो इत्थी भी देखा उन्हें बड़ी चढ़ी करने हिस्सा लिया कने इन च जीत करने तेने अपनी एक अलग ही
0: पहचान बनाई ली और भाई बिल्कुल बागडोर संभाली ली कई इलाके चाह दी बहनी तब यहाँ दी शुभकामनाएं उन सारी बहनियां सौगी कि भाई तुहां भी अपने इलाके दा जी ऐसे विकास करन तुहां भी बहुत बदी चढ़ी कने अपना सारा कामकार करन कने भाई बहुत ही तुहां चमकन
1: बिल्कुल चमक दिया देखा जरूर है ना दिया जी ऐसे अपने घर चमका दिया दिया अपने आप जो चमका दिया निखार दिया पर देखा पूजा कई बार क्या होंगे ना कि हाँ दी बहन ही बोल दिया कि घर का काम निपटाने के बाद तिना जो लगता कि तिना दी आखी च जी ऐसे निंदरा करने परोई गई है ना कने इन चलते तिना जो लगता कि हाँ दिन च पत्नी कितने का घंटे सोई लीए तो देखा हाँ दे जेडे जी डॉक्टर हैं सब बोलते कि ये किसी समस्या का संकेत हुंदा करे हाँ जो सतर्क होना जी ऐसा बड़ा जरूरी है क्योंकि हाँ दे बॉडी जी ऐसे रोज हाँ दे हार्मोन्स जी ऐसे बदलते रहते चेंज होते रहते कने इस दौरान अगर हाँ जो कुछ इस तरह दे संकेत हाँ जो लगा दे ता है अपने चिकित्सक करने जी इसकी सलाह करी सकते ते ना ते कोई परामर्श जी ऐसे ले सकते हैं
0: बिल्कुल यानी कि तुहां 7-8 घंटे री नींद जे हसे सुते है सब ही तुहां दी पूरी होएगी सारा कामकार तुहां निपटाया पर तुहां बड़ा थका थका महसूस करा दे कने इया तुहां जो लगा दा भई मन करदा तभी थोड़ी जी देर तुहां सही लेंदे और ही निंद्रा आखी ते ज्यादा नहीं आ ता कुती ना कुती ए थोड़ी जी समस्या है ता आहां इह समस्या बारे च अज तुहाने गलबात करनी
1: जी कने देखा बोल देना कि जी गलाया ना कि बड़ी नींद आ दी ते देखा ज्यादा नींद आना कई बार जैसे थायराइड दी समस्या हो सकती डायबिटीज हो सकती या स्लीप अपीनिया मतलब एड़ी जी बीमारियों का संकेत जी ऐसा हो सकता कने स्लीप अपीनिया एक एड़ी है जेड़ा नींद दे दौरान हाँ जो सांस लैने च रुकावट आउंदी तिसते हाँ दी नींद जी ऐसा भी खराब होंगी कने दिना च नींद की कमी पूरी करने वास्ते इसकी इच्छा जी ऐसा बढ़ी आती है
0: बिल्कुल और दिखा भई शिवाली जालू हाँ थका थका महसूस कर दे हाँ जो लगता भी नहीं भी अनी सही जाना भी है ना मतलब वो कम्मा च हाँ दोबारा लगी भी पाउंदे पर वो एक्टिवनेस नहीं आई पाती है ना
1: जी
0: तो कुती ना कुती ए अहाँ जो अनीमिया भी हो सकता उसकी भी वजह है या आयरन की कमी अहाँ के शरीर च हो जाए तो उसकी भी ये वजह हो सकती या तो फिर अहाँ के शरीर च आयरन की कमी है तो उसके चलते ऑक्सीजन का जो प्रवाह है ना शरीर च सह भी ठीक ढंग ने नहीं होता तो इसके चलते थकान कने नींद की शिकायत बढ़ी जाती
1: बिल्कुल कने देखा इस अगर तुझे तो लगा था कुछ तो है अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख दिए तो है नहीं लेकिन उसके अलावा तो है तो अपनी खुद की डाइट पर भी ऐसे नज़र जी ऐसे जरूर पाना चाहिए तिस जो तो नज़रअंदाज नहीं करना कनेडे च देखा तो ये विटामिन B12 विटामिन डी आयरन जेडे पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी नींद की समस्या तो दसें ना कि बधी आती है तो देखा जी अगर तुम जो कुछ लगता तो तुम अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कने जी टैबलेट्स या जी बोली सकते जड़ी दवाइया मिलती हैं तो तिना का सेवन तो कर सकते हैं
0: जी जी देखा शिवाली गल भी है कि भाई अच्छा 8-9 घंटे सोने के बाद भी तुम जो लगे भी नींद नहीं पूरी हो आती कुछ आखी पर बोझ है
1: जी
0: या चतनगिया ने तुह काम नहीं करी पा दे है ना तभी इसते देखा समस्या तो है ही कुती ना कुती समस्या है ही तभी इसते क्या है कि जिया मोटापा जिया या डायबिटीज का खतरा भी बधिया दा
1: जी जी
0: जी कने ती जे यादाश्त कमजोर हो आती थोड़ी थोड़ी आ चीजा रखी ने भूलिया है आह जो याद नहीं कि वो हालती चीज मैं दिखी थी हूँ कुती दिखी है पता नहीं याद नहीं रहा

0: या ता फिर शिवाली अहां दे व्यवहार च ना चिड़चिड़ापन जे असर सामने दिखने जो मिला दा
1: जी जी
0: अहां चिड़ी निकदम जवाब दिया दे चाहे छोटी जी गल नी ता ए भी इस दे ही लक्षण हो ही सकदे।
1: बिल्कुल कन्ना देखा अगर थां जी लगदा ता तो हां अपना ध्यान जी ऐसे दे सकते हैं अपना पूरी सलाह जी अपने डॉक्टर कन्ने जी ऐसे कर
0: ले सकते
1: हैं है ना। कने देखा पूजा वक्त इथी हुन जो इजाजत नहीं देदा कार्यक्रम जो आगे बधाने वास्ते
0: बिल्कुल
1: ता हुन अपने लेंदे अपनी सारी सखियां
0: ते अनुमति कने बोलना
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। रोज की तरह आपका कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक देशभक्ति गीत के साथ। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

शहीद फिल्म से अभी हमने आपको गीत सुनवाया उदित नारायण, भूपेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए।

कभी खुशी कभी गम फिल्म से भी मैंने आपको गीत सुनवाया अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए।

सेंट मयू कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निर्जा फिल्म से, और इस गीत को गाया है शेखर रवि जनी ने।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को ही आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकारे। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नज़र से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमयी इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री

कर देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी? हमारे गौर श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी, और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी, और बस सुनने में मज़ा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है, आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इज़राहे मोहब्बत होती है, बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो, या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए, तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना, बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी, और बस इतना बता दीजिए ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज़ किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। अब ये इजराहे मोहब्बत जो है, आप सब सबको प्यार हो हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफ़ी की भी आवाज़ भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नज़र आते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज़ झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं। ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुज़ुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदी आवाज़ अनमोल रत्न रफ़ी साहब की है। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दें ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे ज़माने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं दिखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय की बात, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही है तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी है तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें। और एक बार हमने लिखा भी, और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी, वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ये अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूँगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, आज विश्व साइकिल दिवस है, तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल, आपकी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे
फूट जाते करम, खेतों के इंतजार में रहते, खेतों के खतों के इंतजार में रहते हरदम, जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है। और ये खत कितने काम की चीज़ रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम हैं, उस प्रेम के बारे में, जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नज़ाकत इनायत और तड़प का जिक्र है, जहाँ दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहाँ दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है, तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है, जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

0: ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये ज़माना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विदी जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटखट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नज़र उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास, कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नज़र आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया, खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था। हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा, ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूँ। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एकमात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी प्यार इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है। जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रही है, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ, ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है। हमारे श्रोता लिखता है, किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं, और इन्हीं बातों के बीच में
1: हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं, उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुँचते हैं, यह अनकही बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है, शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कनें ज़्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज़ पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर लफ्ज़ के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको जब आपका, जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है?

लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था, बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्ज़ाम था, तो देकर अभी निकला ही था, तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था, डोली तेरे अग्नि, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था, जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ होने लगता कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी, और जब उनको देखती तो खुशी होती थी। पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को खत एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे, तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्ट कार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक ज़माने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था, मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊँ, उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान, वो भी। लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी, वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहाँ डाक किया सब चिट्ठियाँ डालकर जाता है। हमने पढ़ा सब, जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं, और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं, और पहले का ज़माना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए, तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत, ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा,
खत तो लिखा, लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गा गा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज़ में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना ज़रूर जानना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी, तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाज़ों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो नहीं, रेडियो सेवा नहीं, बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज़ मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज़ में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ, कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैयां थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी, तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: बस यही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर, और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नज़र, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो ज़ुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ, कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की, तो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में ओपी नैयर के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल

उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों इशारों में बात थी। अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है। आपने भी लिखे, हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल शारो इशारों में। रफ़ी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है। मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है। और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। ये लिखते हैं खुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आज्ञा दीजिएगा इस गीत के साथ।

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्ज जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को ही आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritobrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivakumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And in Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon.

0: And now the news in detail. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan, Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Rekha Gupta have also extended condolence over their loss of lives. More from our correspondent.
1: The fire incident occurred at 8:48 this morning. Soon after the incident, teams from Delhi Fire Services, Delhi Police, the District Disaster Management Authority and other emergency response agencies were swiftly mobilized and launched rescue and relief operations. More than 40 people have been rescued and shifted to nearby hospitals for treatment. The fire has been brought under control with the help of 8 fire tenders. Rescue and search operations are still underway and all concerned agencies remain deployed at the site to provide every possible assistance to those affected. The cause of the fire is yet to be ascertained. Delhi Police has registered an FIR in connection with the incident. With Dipendra Kumar, Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: West Bengal's former ruling party, the Trinamool Congress, is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA Ritobrata Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Ratindra Bose asking to be recognized as the real the TMC. In a counter move, TMC announced Shobhandev Chattopadhyay as the leader of the house, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as the chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Supreme Court has constituted a high-powered expert committee to conduct an independent review of the Centre's report on the definition and delineation of the Aravali Hill Range. The committee will be headed by Kanchan Devi, Director General of the Indian Council of Forestry Research and Education. The panel has been asked to submit its report by 31st of August this year. The Apex Court said an impartial and scientific assessment is needed to address key issues related to the protection of the Aravali ecosystem. The court had earlier stayed the implementation of an Environment Ministry report submitted in October last year and called for a fresh review by independent experts. India has surpassed America in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. India has crossed a remarkable 155 gigawatt of installed solar capacity, helping achieve country's 50% non-fossil fuel capacity target and fulfill its nationally determined contributions ahead of schedule. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained the scanned copies of their evaluated answer books. In a social media post, CBSE informed that payment gateways of SBI, Canara Bank, Bank of Baroda and Indian Bank are available on the verification and re-evaluation portal for students applying for post-result services. CBSE has clarified that students are not required to hold accounts with any of these banks to complete the payment process. Karnataka Congress Legislature Party leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4pm in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. Along with them, 12 legislators are to be sworn in as ministers today. More from our correspondent.
2: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony, as it is the place from where Shivakumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the president said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
3: PM Janman Yojana ke tehat janajatiya samuday mein bhi sabse pichle samuh ke 20,000 se adhik gaon tak vikas karyakram ko pahunchane ka lakshya hai. Hum sab jante hain 75 jo groups wo hai PVTG. PVTG sabse pichle abhi bhi koi पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को, जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है.
0: The president called upon all the agencies and stakeholders to ensure the development of every aspect of tribal welfare, including dignified job for youth and school for every tribal child.
3: ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए. आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए, कहां तक नहीं पाए. पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं. लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा.
0: She stressed that tribal youths must be encouraged to participate in sports activities. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter, healthier and greener nation. Sharing a video message on the World Bicycle Day, the minister noted that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being, but also contributes towards building a healthier and greener nation.
4: Cycling keeps us fit, energizes the body and improves mental health. The more we use the cycle, the less pollution there will be and the country will benefit from the saving of petrol and diesel. In this era of global challenges, Prime Minister Narendra Modi has also urged the people of the country to reduce their dependence on petrol and diesel vehicles. In this regard, cycling can become an effective and positive solution.
0: In Mizoram, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has called upon the people to actively participate in the nation-building process and contribute towards the vision of a developed India by 2047 under the Viksit Bharat initiative. During an interaction with government officials at Kolasib district, the minister emphasized that the central government places high priority on the development of the northeast region. Prime Minister Narendra Modi today shared an article authored by Union Minister Chirag Paswan highlighting the unlocking of new opportunities in Ladakh. In a social media post, the Prime Minister noted that a berry native to Ladakh is scripting a story of innovation and opportunity. He observed that the article presents a compelling reflection on how entrepreneurship and value addition are opening new avenues of prosperity in Ladakh. The RBI, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, HS Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Kang and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा. पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची. सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना. वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा. और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे. अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
7: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
5: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन

0: किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।

0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर 3 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, अमीर भाई और साथियों की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

सुनो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और

0: शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर आए।

सही ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीत आदित्य की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बरात बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करू रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 3 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाले जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी एजेंसियों और हितधारकों से जनजातीय कल्याण के लिए प्रत्येक पक्ष पर ध्यान देने को कहा।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुँचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि जनजातीय युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उन्होंने कहा कि HRTC के बेड़े में 200

0: 197 इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें शामिल की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई हैं और इनके लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिलने सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं।
0: प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ व हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल को नियमित आदत बनाने से संतुलित और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन को भी समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है बल्कि एक स्वस्थ और हरित राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देता है।
3: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान 9 जून को माँ यानी मदर्स अगेंस्ट अब्यूज एंड एडिक्शन विषय पर महानाटी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है जनजातीय गरिमा को प्रौद्योगिकी का समर्थन। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
5: देश भर में फैले जंगलों, पहाड़ियों और दूरदराज की बस्तियों में एक शांत सफल परिवर्तन चल रहा है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से भारत की विकास गाथा के केंद्र में अपने उचित स्थान का इंतजार कर रहे थे। आज वे राष्ट्र की प्रगति के सक्रिय वास्तुकार के रूप में उभर रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव की यही भावना है, विकसित भारत की यात्रा का एक राष्ट्रीय उत्सव जहां प्रगति भूगोल या परिस्थिति का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का समान रूप से अधिकार है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और संबंधित पहलों में 549 जिलों और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,911 ब्लॉकों के 63,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिक लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ इन प्रयासों का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसी आवश्यक सेवाओं का संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। इस वर्ष जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन लगभग 4 विषयगत सप्ताह के आसपास किया जा रहा है, जो एक साथ जनजातीय विकास के पूर्ण आयाम को दर्शाते हैं। उद्घाटन का विषय विकास के एक वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी इस बात को दर्शाता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम, विज्ञान और नवाचार भारत के कुछ दूरस्थ समुदायों तक शासन और अवसर का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं। जनजातीय भाषाओं, संस्कृतियों, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का पर्याप्त सम्मान करते हुए विकास को अंतिम दूरी तक पहुंचना चाहिए। जनजातीय गरिमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिरसा यानी एक सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है। सिकल सेल रोग लंबे समय से जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य की एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और अब भारत अब समानता और पहुंच में निहित उन्नत विज्ञान के साथ उस चुनौती का जवाब दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। CSIR में हाल ही में एक संगोष्ठी में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और सिकल सेल योद्धाओं को एक साथ लाया गया, जो वैज्ञानिक प्रगति और प्रयासों के पीछे की मानवीय तत्कालिकता दोनों को दर्शाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी और आयुर्विज्ञान जैसे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक आदिवासी समुदायों द्वारा लंबे समय से संरक्षित समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, मान्यकरण और संरक्षण में मदद कर सकती है। समावेशन की यही भावना इस बात को आकार दे रही है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जनजातीय विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मंत्रालय ने एक सरल लेकिन दृढ़ विश्वास पर आधारित AI सक्षम प्लेटफॉर्मों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भाषा एक बाधा नहीं है जिसे दूर किया जाना है, बल्कि एक पहचान है जिसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक अभिकथन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। आगामी ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय कलाओं, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, संगीत, शिल्प और सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इस प्रयास को पूरा करते हुए जनजातीय भारत का प्रस्तावित GI संभावित कला और शिल्प एटलस भौगोलिक संकेत क्षमता के साथ जनजातीय हस्तशिल्प, वन उत्पादों और पारंपरिक कला रूपों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करेगा।
6: अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। वर्ग के 3:10 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
7: वो बहुत जरूरी है क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
8: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
7: जी,
8: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
7: हाँ।
8: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता और क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
7: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा बिठा लेते हैं तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
8: बिल्कुल सही कहा, परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है और प्रेमपूर्ण होकर

0: संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं। और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल,
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो हैं, कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भैया आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं, चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें। अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं, ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल, कि रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है, और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी, और जीवन का वो आधार है।
0: क्या, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे, लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था, जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं, और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर, वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया, और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दुल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घर चोला साड़ी की।
0: क्या बात है, गठचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो गठचोला साड़ियाँ गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। गठचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला है इसका मतलब है कि पोशाक,
0: पोशाक।
1: और
0: हाँ
1: दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है, बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है जिस पर जरी का काम किया जाता है। गठचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी गठचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: हैं, साइड में रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी, हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि गठचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें गठचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: गठचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो गठचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेतर साड़ी के ऊपर जो है गठचोला साड़ी डालती है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और गठचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: महत्व होता है। बिल्कुल, और गठचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल ही, इतना प्यारा विषय है साइकिल हमारा, इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात, और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और पर्यावरण के नज़रिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था, और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है
1: तो
0: तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी
0: पढ़िए
1: चाहिए,
0: जी।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे उन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: साल निकाल
0: निकाल
1: दिए, कितनी
0: दिए।
1: अच्छी बात है। और
0: जी
1: वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर
0: जी
1: बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दो दोपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुनना कि गाना कोई दूसरा सुनवा
1: हाँ
0: देंगे, गाने
1: हाँ
0: सभी अच्छे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना,
0: जी।
1: घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना
0: एक
1: चाहिए।
0: और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम

0: कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया
0: तो
1: है।
0: पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर
0: हाँ
1: जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान
1: जी
0: रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: एसी में
1: और
0: साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दोपहिया
0: आज
1: वाहन या
0: उल्टा है।
1: मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था
0: हाँ
1: तब।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता
1: जी
0: पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द हैं इसमें। इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या
0: या
1: फिर
0: रणनीति,
1: रणनीति।
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें
1: जी
0: भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्प

0: का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकाल कर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
1: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसके द्वारा किया जाएगा और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
0: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
1: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
0: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो
1: हमारे
0: इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी
0: उन
1: जाए किसी
0: हाँ
1: भी तरह से,
0: ताकि उनका
1: लेकिन
0: पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें, पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते
0: क्या बात है।
1: हैं।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जल जल रहे ना रहे, हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम
1: जी
0: यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: तो कार्यक्रम
1: चलिए,
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह

0: से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं, अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं. और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
0: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये गाना, बहुत पसंद है.
0: ये धरती ये नदियाँ
1: और विविध भारती और अलिया वर्जंग.
0: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों
1: को और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो येस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज़ आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मैनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत ज़रूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
1: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज़ नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन, घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देर इज अ डोर बेल। तो इन्वायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो येस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा ज़ोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
0: और शुरुआत में कोई चीज़ पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है, अगर छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: पल पल दिल के पास,
0: तुम रहती हो।
1: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
0: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा, वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफ़ी अलग हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी आपके
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज़ एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू ऐड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफ़ी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ़ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें। क्लासरूम नॉइज़ को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ़ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफ़ी अलग होता है। तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज़ इज़ जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
0: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
1: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज़ और कंसर्नस नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्नस आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। पर ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
0: बिल्कुल,
1: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं ना हम सबके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child.
0: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फ़र्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज़ अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा, ओके। पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत ज़रूरी है। अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं, ओके। क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है, ओके, बुक इस तरीके से खुलती है, ओके। अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं। कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है, और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा। हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
0: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं. अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
1: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज़ होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज़, नो अंडरलाइंग इशूज़ एज सच. बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज़ का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
0: बिल्कुल, जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
0: ए दिल है मुश्किल जी ना, ये जी सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज़ मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल हैं तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ, जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज़ को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज़ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज़ मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता
0: है। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स

0: है, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ।
1: जी
0: एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और उसको बीएड का कोर्स करना है या एमएड का कोर्स करना है या डिसलिटी आईएसएल का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के
1: जी
0: लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज़ टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीज़ें तो हैं इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में, कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है। ओके, ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज़ कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज़ नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना ज़रूरी है। थर्ड इज़ द एक्सेसिबिलिटी, इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज़ जो है, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइनअप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे। कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं
0: मैं इस
1: कि
0: क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय
1: आप तो
0: पर्सनल
1: हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही
0: नोट, उसके
1: हैं।
0: पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स, आई थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें, तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है, बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू। ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर।
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ, तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी। अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो, तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे, माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
1: जी संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूँ कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, some people say, I have a vertigo issues and all, okay? So this is a new thing which is being developed in the department. फिर हमारे पास एक department है जिसको हम बोलते हैं speech language pathology department, जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में problem आती है, stutter करते हैं, stammer करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहाँ तक पहुँच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहाँ जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो ज़रूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है. आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
0: sure.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जंग संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF price for the airline carriers who want to participate in this, उनको एक stable ATF price अभी current crisis के दौरान मिलेगा। इससे हमारे entire aviation sector में करीब 70 लाख से अधिक जो jobs हैं, जिनके ऊपर impact पड़ना आरंभ होने लगा था because of the stress in the sector, वो इससे significantly mitigate होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई।

0: है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के बाद आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम यू मंच शाम 5:30 पर। 6 बजे समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। पर आप सुनेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। शाम 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:05 पर समय रहेगा देश गान का। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:45 पर समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश श्री अशोक तिवारी से भेंट वार्ता। रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर समय रहेगा समाचार संध्या का, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। रात्रि 10:30 पर समय रहेगा रोमांटिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का। देर रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:08 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं भजन संध्या कार्यक्रम। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले तमाम प्यारे श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ईश्वर हर कण में विद्यमान है। उन्हें पाने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन और निर्बल भाव की आवश्यकता होती है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे अपनी मधुर आवाज में ढाला है जोगिंदर भल्ला और साथियों ने।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम भजन संध्या।

एक संत ने किसी एक संत से किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धन क्या है। संत ने उत्तर दिया, संतोष। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वही वास्तव में धनी है। भक्ति हमें संतोष और आत्मिक सुख प्रदान करती है। तो चलिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनते हैं। स्वर है वंदना धीमान और साथियों का।

0: संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। भक्ति मन को स्थिरता और जीवन को दिशा देती है। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कर्नेल राणा और साथियों को।
1: देवाधिदेव भगवान शंकर के अजीबो गरीब रूप देखकर गौरा की सहेलियां डर से सहम जाती हैं। गौरा की मां एक पल के लिए बेहोश हो जाती है। वे गौरा की शादी भगवान शंकर से करने के लिए मना कर देती हैं। नारद जब इस बात की खबर भोले शंकर को देते हैं तो वे इसमें अपना अपमान समझ और राजा कैलाश के महलों की चकाचौंध को देख अपने आप को गौरा का योग्य वर ना मानते हुए शादी का मंडप छोड़ कैलाश की तरफ प्रस्थान करते हैं। तब मां गौरा उनके पीछे भागते हुए कुछ यूं कहती हैं।

0: श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना तथा मानवता की सेवा करना। ईश्वर का स्मरण हमारे जीवन को प्रकाश, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का भजन संध्या कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या कार्यक्रम।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। तो लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम यू मंच।

यो मंच कार्यक्रम सुनने वाले तमाम प्यारे श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। तो युवा साथियों, कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यो मंच लेकर। युवा साथियों, कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन विशेष की। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 3 जून है और प्रतिवर्ष 3 जून को हम जो है विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। युवा साथियों, प्रतिवर्ष

3 जून को विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपको बताता चलूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को एक प्रस्ताव पारित कर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था तथा इस पहल को सफल बनाने में पोलैंड के सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेकेश सिबिल्स्की तथा उनके विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने समाज शास्त्र के छात्रों के साथ मिलकर विश्व साइकिल दिवस घोषित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया तथा उनके सतत प्रयासों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब से यह दिवस दुनिया भर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। वास्तव में विश्व साइकिल दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक परिवहन साधक के रूप में बढ़ावा देना है। वास्तव में यह दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने, धरती से कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह सड़क सुरक्षा, सस्ती परिवहन व्यवस्था और हरित भविष्य के निर्माण का संदेश भी देता है। युवा साथियों, साइकिल का इतिहास अत्यंत रोचक है। आधुनिक साइकिल के विकास की शुरुआत वर्ष 1817 में जर्मनी के आविष्कारक कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा निर्मित ड्रेसिन या हॉबी हॉर्स से मानी जाती है। यह पूरी तरह लकड़ी की बनी होती थी और इसमें आज की तरह पैडल नहीं होते थे। इसे चलाने के लिए सवार को अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलना पड़ता था। बाद के वर्षों में स्कॉटलैंड के किर्क पैट्रिक मैकमिलन सहित अनेक आविष्कारकों ने साइकिल के विकास में योगदान दिया। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1860 के दशक में फ्रांस में पैडल युक्त साइकिलों का विकास हुआ। आपको बता दें कि फ्रांसीसी आविष्कारक पेरे लाले में द्वारा पैडल युक्त पहिए के विकास को साइकिल के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय की साइकिल को वेलासिपिट कहा जाता था। युवा साथियों, आरंभिक साइकिलों के पहिए लोहे या लकड़ी के होते थे तथा सड़कें भी अत्यंत उबड़ खाबड़ थी। परिणाम स्वरूप सवारी के दौरान इतना अधिक कंपन होता था कि उन्हें बोन शिकर अर्थात हड्डियां हिला देने वाली साइकिल कहा जाता। बाद में वर्ष 1888 में जॉन बॉयड डनलप द्वारा हवा भरे रबर टायर के आविष्कार ने साइकिल यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और लोकप्रिय बना दिया। साइकिल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के निर्माताओं ने इसमें अनेक सुधार किए, जिनमें पतले तिलियों वाले पहिए, बॉल बेरिंग और ब्रेक जैसी सुविधाएं शामिल थी। आज साइकिल केवल एक परिवहन साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन चुकी है। यह ईंधन रहित साधन होने के कारण वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ते जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों की समस्या के बीच साइकिल एक प्रभावी और टिकाऊ समाधान के रूप में उभर रही है। यही कारण है कि दुनिया के अनेक देशों के लोग पुनः साइकिल की ओर लौट रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका सहित कई देशों में साइकिल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी, क्योंकि यह सामाजिक दूरी बनाए रखने का सुरक्षित व शानदार माध्यम भी था। विश्व में साइकिल की लोकप्रियता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि नीदरलैंड ऐसा देश है जहां इंसान से अधिक साइकिलें हैं। लगभग 1.8 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 2.3 करोड़ से अधिक साइकिलें हैं और लगभग 27% यात्राएं केवल साइकिल के माध्यम से पूरी की जाती हैं। इंग्लैंड, बेल्जियम तथा अन्य यूरोपियन देशों में भी बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक जीवन में साइकिल का उपयोग करते हैं। कई देशों में साइकिल टू वर्क जैसी योजनाएं लागू हैं जिनके माध्यम से लोगों को कार्यस्थल तक साइकिल में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चीन में भी लंबे समय तक ईंधन की बचत और सस्ती परिवहन

0: व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर साइकिलों का उपयोग किया जाता रहा है। युवा साथियों, भारत में भी साइकिल ने आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशकों तक यह देश की परिवहन व्यवस्था का प्रमुख साधन रही। विशेष रूप से 1960 से 1990 के बीच अधिकांश भारतीय परिवारों के पास साइकिलें होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने, दूध विक्रेता दुग्ध आपूर्ति करने तथा विद्यार्थी विद्यालय और महाविद्यालय जाने के लिए साइकिल का व्यापक उपयोग करते थे। भारतीय डाक विभाग का बड़ा हिस्सा भी लंबे समय तक साइकिल आधारित रहा और आज भी अनेक डाककर्मी साइकिल से पत्र वितरित करते हैं। इस दृष्टि से साइकिल ने देश की आर्थिक गतिविधियों और ग्रामीण जीवन के को प्रगति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साइकिल चलाने के अनेक स्वास्थ्य लाभ भी है। नियमित रूप से प्रतिदिन लगभग 30 मिनट साइकिल चलाने से हृदय मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है तथा शरीर की अतिरिक्त कैलोरी खर्च होती है। इससे मोटापा नियंत्रित रहता है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों का जोखिम कम होता है। साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जोड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है तथा शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी सहायक होती है। साइकिल चलाने से तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा मस्तिष्क की सक्रियता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ सबसे सरल और प्रभावी व्यायामों में से एक मानते हैं। युवा साथियों, हालांकि साइकिल के अनेक लाभ है, फिर भी इसके उपयोग में कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। सुरक्षित साइकिल ट्रैक और आधारभूत सुविधाओं का अभाव, मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, सड़क दुर्घटनाओं का खतरा, साइकिल के प्रति बदलती सामाजिक सोच तथा महानगरों में अनुकूल यातायात व्यवस्था की कमी इसके प्रमुख अवरोध हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों में समर्पित साइकिल लेन विकसित करना, सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग योजना का विस्तार करना, स्कूलों एवं कॉलेजों में साइकिल उपयोग को प्रोत्साहित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। बहरहाल, यहाँ आपको बता दें कि वर्ष 2026 के लिए विश्व साइकिल दिवस की थीम एक हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना निर्धारित की गई है। यह थीम पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत तथा टिकाऊ शहरी विकास में साइकिल की भूमिका को रेखांकित करती है। तो अंत में यह बात कही जा सकती है कि साइकिल केवल एक वाहन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पर्यावरण और सतत विकास की आधारशिला है। यह ईंधन की बचत करती है, प्रदूषण कम करती है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। विश्व साइकिल दिवस हमें यह संदेश देता है कि छोटी सी साइकिल बड़े सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकती है। यदि अधिक से अधिक लोग अपने दैनिक जीवन में साइकिल को अपनाएं तो न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसलिए साइकिल को केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की ओर बढ़ने का सशक्त माध्यम माना जाना चाहिए। तो युवा साथियों, ये तो थी जानकारी विश्व साइकिल दिवस पर। तो चलिए अब आपका मनोरंजन हो जाए और आपके मनोरंजन के लिए सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत, पर उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कमर्शियल कम म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम युमंच। तो चलिए युवा साथियों, अब कार्यक्रम में आपको आगे जानकारी देते हैं UNDP के ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा आयोजित डिजिटल AI एवं इनोवेशन इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार तथा सतह विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और टीमों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। पारंपरिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों की तुलना में यह अवसर विशेष है क्योंकि इसमें प्रतिभागी घर बैठे वैश्विक स्तर की परियोजनाओं में योगदान दे सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में पात्रता और अनुभव की बात करें तो यह एक रिमोट यानी कि ऑनलाइन इंटर्नशिप है जिसकी अवधि 3 महीने है। इसमें युवा दुनिया के किसी भी स्थान से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार या तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हो या विश्वविद्यालय डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो अथवा स्नातक पूरी कर चुके हो, बशर्ते कि चयन होने पर वे स्नातक होने के एक वर्ष के भीतर इंटर्नशिप शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यक्षेत्रों में रुचि या पूर्व अनुभव होना अनिवार्य है। टीम के आधार पर इंटर्न AI और डिजिटल नवाचार परियोजनाओं में सहयोग कर सकते हैं, साथ ही अनुसंधान एवं डाटा विश्लेषण जैसे कार्यों में भी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा वे संचार और साझेदारी में से संबंधित गतिविधियों में सहायता करते हैं तथा ज्ञान प्रबंधन और विभिन्न डिजिटल उपकरणों के उपयोग में भी सहयोग प्रदान करते हैं। इंटर्न को विकास संबंधी पहलों पर अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा जिससे वे प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और वैश्विक स्तर पर समस्या समाधान का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। UNDP की इंटर्नशिप नीति के अनुसार इंटर्न को हर महीने वजीफा दिया जाता है जिसकी राशि कार्यस्थल के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यह वजीफा इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से दिया जाता है। यदि इंटर्नशिप अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम या दूरस्थ यानी कि रिमोट हो तो वजीफे की राशि कार्य समय के अनुसार समायोजित की जाती है जिससे सभी इंटर्न को उनके कार्यों के अनुसार उचित वित्तीय सहयोग मिल सके। अगर आवेदन की प्रतिक्रिया की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में एक संक्षिप्त कवर लेटर और एक CV शामिल होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार को UNDP के वैकेंसी लिंक tinyurl.com/my7kuhr8 के माध्यम से

अपनी जानकारी साझा करने के बाद दिए गए फॉर्म को भरना होगा। तो युवा साथियों, ये तो थी जानकारी UNDP के ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए, अब कार्यक्रम में थोड़ा ही वक्त बाकी बचता है, तो चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

तो युवा साथियों, अब समय हो रहा है आपसे अलविदा कहने का, इसी आशा के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अपने रेडियो दोस्त प्रवीण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यू मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगी। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के तीन जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दे दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है।
1: देश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हुए और इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यासित किया। जिला परिषद के 250 वार्डों में से 144 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के घोषित समर्थित उम्मीदवार जीते। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा मात्र 60 तक सीमित है।
0: प्रदेश के चार नगर निगमों में हाल ही में हुए चुनाव के बाद राज्य सरकार द्वारा महापौर पद के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। सोलम, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगम के महापौर के पद 5 वर्ष की अवधि के लिए अनारक्षित रहेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाहन शहर में लंबे समय से पानी का बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जल शक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता रोशन शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 120 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बार बार नोटिस के बावजूद अपने बिलों की अदायगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता एक सप्ताह के भीतर अपने पानी के बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो बिना नोटिस उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
2: में हमने कम से कम उनको लोक अदालत से भी ये 3-3 बार नोटिस भी चले गए, खुद मेरे द्वारा भी उनको नोटिस चले गए। विद इन 7 डेज में अगर वो नहीं देते तो उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा, ना उनको कोई

0: नोटिस मिलेगा। हम उनको बार बार फोन भी कर रहे हैं, कम से कम 120% ऐसे जो टाइम से अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं, अमाउंट 10,000 से भी ज्यादा, तो अब उनको ना कोई दी जाएगी, सिर्फ कनेक्शन कटेंगे।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 1 जून से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसी कड़ी में बिलासपुर में उपायुक्त राहुल कुमार ने आज इस अभियान का औपचारिक शुभारम्भ किया। उन्होंने जिलावासियों से स्वगणना सुविधा का लाभ उठाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का आग्रह किया। उधर ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने भी जिले के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के प्रथम चरण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना किसी भी राज्य और देश के समग्र व संतुलित विकास की आधारशिला होती है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार व विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:06 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका रेडियो दोस्त प्रवीण। श्रोताओं, संगीत हमारी भावनाओं का आईना है। कभी पुराने गीत हमें बीते हुए सुनहरे पलों की याद दिलाते हैं, तो कभी नए गीत जीवन में नई उमंग और उत्साह भर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफर के साथ। तो जो गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो हमने लिया है फिल्म अंदाज से। स्वर है किशोर कुमार का।

जी हाँ श्रोताओं, सफ़र चाहे जीवन का हो या रास्तों का, अगर साथ में मधुर संगीत हो तो हर मंजिल खूबसूरत लगने लगती है। पुराने दौर के गीतों की यही खासियत है कि वे सीधे दिल को छू लेते हैं। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो दोस्ती, प्यार और जीवन के खूबसूरत एहसासों को बड़ी सादगी से प्रस्तुत करता है।

श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म शोले से। स्वर है किशोर कुमार और मन्ना डे का।

0: जी बिल्कुल दोस्तों, दोस्ती जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। सच्चे मित्र सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं और जीवन की राह को आसान बना देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नए दौर की ओर और सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने युवाओं के दिलों में खास जगह बनाई है। पर उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: तो श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म बोल बच्चन से। स्वर है मोहित चौहान का।

श्रोताओं, प्यार, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट जीवन को खुशियों से भर देती है। संगीत भी रिश्तों की तरह दिलों को जोड़ने का काम करता है। आप सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जो हमने लिया है फिल्म बागी 2 से। स्वर है अंकित तिवारी और श्रुति पाठक का।

श्रोताओं, संगीत की दुनिया में हर दौर की अपनी अलग पहचान है। पुराने गीतों में सादगी है तो नए गीतों में नई तकनीक और नया अंदाज। तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आशा और खुशियों का संदेश देता है।

तो श्रोताओं, नए और पुराने गीतों से सजे इस कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने में आज बस इतना ही, और सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को

0: सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं देशगान, पर उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
4: Thank you.
2: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
2: जी,
4: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब

0: कैटेगरीज को लाभ हुआ है
1: जी
0: और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak,
1: yes,
2: but this number itself may be more than Anubha the population of many of the countries around the
1: ji.
2: world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya, you know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके, यू नो, टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance,
1: mm-hmm.
2: but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities,
2: absolutely,
1: which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of
1: right.
2: time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas okay. Yojana, you know, the whole sanitation program which has yeah. been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, okay. the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे, कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या, जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था, भाई ये तो मेरा हक है, वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
0: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए,

0: आपने रोटी कपड़ा मकान की बात
1: जी
0: की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो
1: जी
0: इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था
1: जी
0: जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है,
1: जी
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है।
1: जी
0: तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल। सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that there are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In
2: fact,
1: actually.
2: We did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक

0: ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है, और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है। सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है। ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं, और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है।
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है। उसे आप कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है शरद जी?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव। आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे
1: जी
2: हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है।
1: जी
2: और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल
2: थी,
1: डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड
1: जी,
2: था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन, एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती। बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है।
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
2: जो
1: किया,
2: काम किया है,
1: हमें दिख
2: उसके
1: रहा
2: आधार
1: है।
2: पर उन्होंने बोला उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
0: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people, कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगी बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी, जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी व्हिच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपैंड

0: मेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में
1: जी
0: फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे
0: जी
1: हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर
0: बिल्कुल
1: प्लान बनाया गया है,
0: जी
1: और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही
0: जी
1: है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते
0: बिल्कुल
1: हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा
0: बिल्कुल
1: रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम
0: 2047
1: 47 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा
1: आई
0: है?
1: थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात
0: जी
1: करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है,
0: जी
1: उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान,
0: बिल्कुल
1: और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, आप बताना चाहिए।
1: देखिए, हमने जितनी भी जन कल्याण योजनाओं की बात की
0: जी
1: है, अगर हम देखेंगे तो फायदा तो उससे हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
0: बिल्कुल
1: की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है।
0: जी
1: इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है,
0: बिल्कुल
1: तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट
0: जी
1: कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है,
0: जी जी
1: सो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं,

0: और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग। एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना। और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं। आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है। और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा। बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट। अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है। और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the

0: New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel News On Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को घटाकर 1% करने का लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम, कांग्रेस के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए लागू। और सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को देश भर में मिला प्रथम स्थान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आज लोकभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश की प्रेरणादायक उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल हाई फ्लायर के लोकार्पण अवसर पर ये बात कही। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाने की इस पहल की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पुस्तक में शामिल कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। कविंद्र गुप्ता ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा आज समाज में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है और युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन गया है। राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी बल दिया। राज्य के विभिन्न जलाशयों में मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े मछुआरों

0: की आय को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को 7.5% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस निर्णय से गोविंद सागर, पौंग बांध, चमेरा, रणजीत सागर और कोल बांध जलाशय पर आजीविका के लिए निर्भर करीब 6,500 मछुआरा परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन पहलों के माध्यम से मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने डीके शिवकुमार को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दे दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है।
1: इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना। मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक उनके जानते थे कि जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमने पहले भी कहा था वो इसीलिए चुनाव को लटका रहे हैं। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यासित किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत जो है वो दिलवाई। जनता ने प्रदेश से इस सरकार को हटाने का, उखाड़ने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया।
0: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों के लिए 10,021 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल संकल्प को नई गति प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, वंचित व आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और हिमाचल को भी इस योजना का निरंतर लाभ मिल रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगी। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। लाहौल स्पीति जिला की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। शांशा पंचायत को प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंचायत प्रधान प्रशांत को प्रदान किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।

0: लाहौल स्पीति की शारशा पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। इस उपलब्धि से पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूर्व जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध ने पंचायत के सभी लोगों, कर्मचारियों और जिला प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सम्मान सामूहिक प्रयासों, मेहनत और समर्पण का परिणाम है। शाशा पंचायत की इस उपलब्धि ने लाहौल स्पीति और पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: इस बीच मंडी जिला के बल्ह विकासखंड की लोहारड़ी ग्राम पंचायत ने क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा सोलन में 111 घंटों की हैकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के प्रभारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि इस हैकथॉन में पुराने समय में किस तरह से जीव जंतुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जाता था, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भविष्य में नवीनतम व पौराणिक तरीके से जीव जंतुओं का संरक्षण करना है।
2: हैकाथॉन का मतलब भी ये है कि एक लॉन्ग डिस्कशन लीडिंग टू सम कंक्लूजन। सो हम साइंटिफिक डिस्कशंस करते हैं, लंबी डिस्कशन, जैसे पूरी ZSI मिलकर 111 घंटे का ये डिस्कशन। इस साल का जो थीम है वो हमारा है ट्रेडिशनल नॉलेज इन बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडिवर्सिटी को हम कैसे बचाएं ट्रेडिशनल नॉलेज के तहत। मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि भाई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पुराने आज विलुप्त हो रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि जो पुराने जो नॉलेज था हमारा, जो बुजुर्गों का नॉलेज था, वो खत्म हो रहा है। इससे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो फिर उसी ट्रेडिशनल नॉलेज को सामने ला रहे हैं।
1: नाहन शहर में लंबे समय से पानी का बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जलशक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता रोशन शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 120 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बार बार नोटिस के बावजूद अपने बिलों की अदायगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता एक सप्ताह के भीतर अपने पानी के बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो बिना नोटिस उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
3: जो बिलिंग में है हमने कम से कम उनको लोक अदालत से भी ये तीन तीन बार नोटिस भी चले गए, खुद मेरे द्वारा भी उनको नोटिस चले गए। विद इन 7 डेज में अगर वो नहीं देते तो उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा, ना उनको कोई नोटिस मिलेगा। हम उनको बार बार फोन भी कर रहे हैं, कम से कम 120% ऐसे जो टाइम से अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं, अमाउंट 10,000 से भी ज्यादा, तो अब उनको ना कोई दी जाएगी, सिर्फ कनेक्शन कटेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को घटाकर 1% करने का लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए लागू और सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को देश भर में मिला प्रथम स्थान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
9: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमे

0: महानिदेशक हिमाचल प्रदेश श्री अशोक तिवारी से भेंट वार्ता।
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, आइए सुनते हैं नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश श्री अशोक तिवारी से भेंट वार्ता। भेंटकर्ता सपना ठाकुर। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी की हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। युवा अगर उड़ान भरें तो मंजिलों की कमी नहीं है, परंतु यदि कदम नशे की ओर बढ़ने लगे तो अपने भविष्य के साथ साथ परिवार, समाज और देश का भविष्य भी संकट में पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण की। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अशोक तिवारी जी, आप हैं पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग। अशोक तिवारी जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: तिवारी जी। सबसे पहले हम इसी बात पर आते हैं कि वर्तमान समय में चिट्टा समाज के सामने एक चुनौती बनकर उभरा है, प्रदेश में नशे की स्थिति क्या है?
3: देखिए, हिमाचल प्रदेश हम सभी को पता है एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है, बट पिछले कई सालों से एक नशे की समस्या बढ़ रही थी और पिछले 3-4 सालों में उस नशे में भी, लेकिन नशा कई तरह का हो सकता है, सिगरेट से शुरू करें, शराब से शुरू करें, चरस, भांग, गांजा, लेकिन जो चिट्टे की समस्या है, हीरोइन जिसको कहते हैं, ये पिछले 3-4 साल में काफ़ी तेज़ी से उभरी है। स्पेशली जो हमारा यूथ है प्रदेश का, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये काफ़ी वल्नरेबल है। ये जो शिकायतें या इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं कि चिट्टा और ऊपर से पड़ोसी राज्यों से इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी, यूथ का वल्नरेबल होना, तो इस कारण से समस्या बढ़ती जा रही है। पुलिस जो है अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो भी हमारे पास लीगल पावर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए इस समस्या को जड़ से खत्म करें।
2: तिवारी जी, जैसे आपने बात की कि नशे की सप्लाई चेन, तो नशे की सप्लाई चेन में इंटर स्टेट नेटवर्क और युवाओं की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह से चुनौती जो है आपके समक्ष है?
3: जैसे आपको पता है कि पड़ोसी राज्यों से ही सप्लाई आती है, यहाँ तो चिट्टा या हेरोइन बनने की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। यूथ इसमें इन्वॉल्व सप्लाई में उतना ज्यादा नहीं है जितना वो वल्नरेबल है टारगेट ग्रुप है। जहाँ तक सप्लाई चेन की बात है तो उसमें आपको पता ही है कि इजी मनी या और भी कई वजहों से जो भी प्रदेश के और प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के जो लोग हैं वो इस धंधे में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सरकारी एम्प्लाई भी, जिसमें पुलिस वाले भी कुछ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, और ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। तो पीछे हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक सख्त कदम लेते हुए जो हमारे साथी किसी भी कारणवश, दुर्भाग्यवश इन सब चीज़ों में सम्मिलित या संलिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से 21 लोगों को डिसमिस कर दिया है। और आगे भी एक स्पष्ट संदेश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी विभागों के लिए, विशेषकर पुलिस में, क्योंकि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समस्या को जूझना, इस समस्या को खत्म करना, कि कोई भी हिमाचल प्रदेश पुलिस का कर्मचारी किसी भी रंग का, अगर वो चिट्टे या इसकी स्मगलिंग से संबंधित किसी चीज़ में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इंक्लूडिंग डिसमिसल, केस रजिस्टर हो गई।
2: और तिवारी जी, क्या इनकी जो संपत्ति है वो भी जब्त होती है?
3: बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा इस प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा विस्तार से दूंगा। मैंने बताया पिछले कुछ सालों से ये चिट्टे की समस्या बढ़ती आ रही है, तो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये अगर हम केवल हिमाचल पुलिस के ऊपर छोड़ देंगे कि चिट्टे की समस्या को खत्म करना या चिट्टे को पूरी तरह से प्रदेश को खत्म करने केवल पुलिस की जिम्मेदारी, जो एक परसेप्शन था, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत सोचा था या गलत कहा था, फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। उन्होंने कहा कि एक मैं जन आंदोलन चलाऊंगा जिसमें पूरे प्रदेश का स्त्री पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, चंबा से लेकर सिरमौर तक और ऊना से लेकर लाहौल स्पीति तक, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एंटी चिट्टा जन आंदोलन में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले साल 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ शिमला के रिज मैदान से इस एंटी चिट्टा जन आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद 4 अवेयरनेस वॉकाथन हुई, शिमला में हुई, फिर उसके बाद धर्मशाला में हुई, फिर हमीरपुर में और फिर बिलासपुर में। तो इससे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये कहना है कि जो चिट्टे के खिलाफ लड़ाई है, जो चिट्टे के खिलाफ उनका जन आंदोलन है, इसमें युवाओं को आगे आना होगा, एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो ये जो 4 एंटी चिट्टा अवेयरनेस वाकाथन हुई, इसमें विशेषकर यूथ ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, चाहे 11th 12th के स्टूडेंट थे, या इवन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के, या शिमला में IGMC के डॉक्टर्स ने बड़ी संख्या में, और धर्मशाला में और हमीरपुर में, टांडा मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी

0: बड़ी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में आकर उसमें एंटी चिटा वेनस वाकाथन में भाग लिया। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि पूरे प्रदेश को इस लड़ाई को लड़ना होगा, विशेषकर युवा वर्ग को, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ कोई परिवर्तन आया बड़ा तो उसमें युवा वर्ग का बड़ा सक्रिय योगदान रहा।
1: जी।
0: तो यहाँ भी उन्होंने इस बात को समझते हुए कहा है कि युवाओं को उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय भूमिका इस लड़ाई में निभा रहा है। पुलिस के कंटेक्स्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमको भी युवाओं से पूरा सहयोग मिल रहा है। इन एंटी चिट्टा अवेयरनेस वाकाथन के अलावा भी हमारे पुलिस के साथी, चाहे पुलिस स्टेशन लेवल के हमारे SHO और उनके साथी हैं, या सब डिवीजन लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SP, यहाँ तक कि शिमला में पुलिस मुख्यालय में मैं और मेरे साथी, हम लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ लोगों को अवेयर करते हैं कि पहली बात चिट्टे से कैसे दूर रहें, दूसरी बात लोगों को
1: आम लोगों
0: पड़ोस
1: को
0: में,
1: जोड़ा जा रहा है।
0: आम लोगों को पड़ोस में, परिवार में लोगों को, उनको भी कैसे अवेयर करें कि चिट्टे से दूर रहना। तो अगर ये युवा वर्ग जग जाएगा और पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।
1: चिट्टे के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें आप जीत हासिल कर रहे हैं। नशे के खिलाफ ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तिवारी जी, जैसे कि आपने कहा कि एक वाकाथॉन की भी आयोजना है, 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिज मैदान शिमला में एंटी चिट्टा और क्लीन एनवायरनमेंट अवेयरनेस मिनी मैराथन 2026 का आयोजन कर रहे हैं। इस पहल के जरिए आप प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस मिनी मैराथन में किस तरह के आयोजन और क्या कार्यक्रम शामिल रहेंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे?
0: देखिए, हम सभी को पता है कि जो जून 5 तिथि है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम पे मनाया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, उनके सेक्रेटरी और हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हर साल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं बट पीटर हॉफ में करते हैं। तो इस बार उन्होंने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिल के इसको करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, इसको बड़े स्तर पर एक आप आयोजित कीजिए। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम 5 जून को एक एंटी चिट्टा अवेयरनेस और ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल प्रदेश, इसकी अवेयरनेस के लिए ये एक हम मैराथन या मिनी मैराथन आप कह लीजिए, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर। इसमें एक 10 किलोमीटर की रेस होगी जिसको आप मैराथन या मिनी मैराथन कह सकते हैं, और दूसरी ड्रीम रन है वो 3 किलोमीटर की है। तो जो विजेता होंगे मेल और फीमेल कैटेगरी में, तो 10 किलोमीटर वाले में उनको 51,000, 31,000 और 21,000 रुपये का इनाम मिलेगा दोनों कैटेगरी में, मेल और फीमेल अलग। और जो 3 किलोमीटर की ड्रीम रन होगी उसमें जो विजेता होंगे उनको 21,000, 11,000 और 5,000 का इनाम मिलेगा। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमने बुलाया है, करीब 50 से 100 के बीच में उनकी संख्या है, वो लोग आएंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी हम एक रिवॉर्ड टाइप का देंगे जो भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा जो भी इस मैराथन को, चाहे वो ड्रीम रन है चाहे 10 किलोमीटर वाली मैराथन है, जो भी इसको फिनिश कर लेगा सक्सेसफुली तो उसको हम एक मेडल भी देंगे जैसा नॉर्मली मैराथन में दिया जाता है। सुबह गवर्नर महोदय आएंगे महामहिम, वो इसको फ्लैग ऑफ करेंगे 7 बजे, और जब ये इवेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो 9 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, और एक ये जो क्लोजिंग फंक्शन होगा जिसमें ना केवल इन मैराथन के विजेताओं को बल्कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने जो रिकॉग्नाइज किया कि जिन लोगों ने पूरे प्रदेश में, बच्चों ने, बड़ों ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने, जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन के अगेंस्ट काफ़ी काम किया है, तो उनको भी माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। ये मोटा मोटा लेआउट है इस प्रोग्राम का।
1: यानी कि युवाओं की भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा रहेगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए दौड़ने सुबह जब आएंगे 7 बजे, जब माननीय राज्यपाल महोदय फ्लैग ऑफ करेंगे तो युवा ही ज्यादा आएंगे, बुजुर्ग तो कम ही होंगे। अभी तक की मैं आपको फिगर बताऊं, कल शाम तक की जो थी तो हमारे पास करीब 2,500 रजिस्ट्रेशन होंगे। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, बट मैं साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि जो हमारे साथी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते या करा पाए किसी भी वजह से, अगर वो 5 तारीख को सीधे वहां पे प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने इसलिए रखा है कि हमको एक तो आइडिया हो जाए कि लगभग कितने लोग आने वाले हैं, दूसरा इसमें हम लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद एक टी शर्ट दे रहे हैं, उसमें लोगो लगा होगा पॉल्यूशन के अगेंस्ट और एंटी चिट्टा हिमाचल पुलिस के लोगों के साथ, तो वो उनको हम दे सकते, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का रखा है। तो कल शाम तक की फिगर ये थी कि लगभग 2,500 मेल एंड फीमेल उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। हम मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक या 5 तारीख की सुबह तक ये संख्या करीब 3,000 से 3,500 के बीच होनी चाहिए।
1: अशोक तिवारी जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नशा मुक्त हिमाचल की, तो जो नशे की चपेट में युवा आ चुके हैं उनके इलाज के लिए और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार की क्या दीर्घकालिक योजना है, क्या कर रही है
0: ये
1: सरकार?
0: आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा
1: पुनर्वास के लिए उनके।
0: मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एंटी चिट्टा जन आंदोलन प्रदेश में लॉन्च किया है। देखिए, इस जन आंदोलन जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद कर रहे हैं, इसके 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट। पहला है कि डिमांड जो है वो कट करे, तो उसमें जो हमारे पुलिस के एक्शन हो रहे हैं कि सप्लाई चेन जो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसको हम रोकें, तो जो भी इस तरह की तस्करी में इन्वॉल्व है उनको हम पकड़े, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। दूसरी चीज है जो आपने भी बोला कि डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कहा है कि चिट्टे के नशे के तस्करों के साथ तो कोई रहम नहीं होगी, उनके खिलाफ सारी कानूनी कार्रवाई होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी नौकरी जाएगी, प्राइवेट पर्सन है अगर उन्होंने इसे इलीगल कार्रवाई से स्मगलिंग से कोई प्रॉपर्टी बना रखी है तो उसको डिमोलिश भी किया जाएगा कानूनी प्रक्रिया का पूरा सहारा लेकर। लेकिन साथ में जो हमारे साथी हैं जो पीयर प्रेशर में या किसी और वजह से इसके शिकार हो गए, उनको चिट्टे की या नशे की लत हो गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये कहना है कि इनको हम डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। तो जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है 112, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे देश में हम लोग इस वक्त प्रथम है, इस साल फरवरी से हम लोग पूरे देश में रिस्पॉन्स टाइम में 1 है। तो इस पे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 दिसंबर को धर्मशाला के एंटी चिट्टा अवेयरनेस वाकाथन में ये घोषणा की थी कि जो भी इस पे चिट्टे से संबंधित सूचना देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी अनाउंस किया है कि यदि किसी के घर में किसी के पड़ोस में कोई ऐसा चिट्टे नशे का लती है लड़का या लड़की, उसको अगर किसी तरह की कोई मदद चाहिए जैसे काउंसलिंग हो गई या डी एडिक्शन के लिए मेडिकल हेल्प कोई चाहिए तो उसके लिए भी वो 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में उसमें सूचना दे सकते हैं और पुलिस जो है पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, उनको काउंसलर से भी कनेक्ट कराने की कोशिश करेगी, अगर उनको कहीं मेडिकल कॉलेज या किसी डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर दाखिला लेना है वहाँ कोई मदद चाहिए उसके लिए भी मदद करेंगे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मशोबरा में अभी 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए जो डी एडिक्शन से कम रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसकी इनॉग्रेशन करेंगे और वो हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है उसको चलाएगी
1: जी।
0: जो मेडिकल सपोर्ट है वो हमको आईजीएमसी से मिलेगा और जो मशोबरा की प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे मिलेगा, बट इसको रन जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी और ये पूरे प्रदेश का पहला ऐसा डी एडिक्शन सेंटर होगा जो केवल महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि चिट्टे के नशे की जो लत है वो लड़के लड़कियाँ दोनों में है। किसी भी परिवार में लड़कों को भेजने में या लड़कों के लिए ट्रीटमेंट के लिए लोगों को उतनी हिचक नहीं होती जितनी लड़कियों के लिए होती है, तो ये था कि पुलिस के अगर ट्यूटले जैसे कि या पुलिस के गार्जियनशिप में अगर इस तरह का कोई सेंटर बने तो शायद दुर्भाग्यवश जिन परिवारों में बच्चियां जो हैं लड़कियां वो इस नशे की शिकार हो चुकी हैं तो उनको झिझक नहीं रहेगी, उनको लगेगा कि हमारी लड़की अगर वहां पे एडमिट है या वहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक सिक्योरिटी है। तो ये हो गया डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन की बात। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमने शुरू में बात की वो अवेयरनेस, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यही देखते हुए इसी बात को सोचते हुए कि पूरे प्रदेश में पहले एक अवेयरनेस तो जाए, अवेयरनेस किसकी, दो बात की, पहला चिट्टा है क्या, इसकी समस्या क्या है, लोग कैसे इसके शिकार है, और दूसरा ये अवेयरनेस कि भाई ये हर एक की लड़ाई, मतलब अगर चंबा के गांव में कोई बुजुर्ग है वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता ये चिट्टे की समस्या है, ठीक है हिमाचल सरकार जाने या पुलिस विभाग जाने, तो ये दूसरी अवेयरनेस है कि भाई ये हम सबकी मिली जुली लड़ाई है, हम सबको मिलके एक साथ इस समस्या से लड़ना है। और जैसे मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये विजन है कि इसमें युवा सक्रिय भूमिका निभाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर साथ चले
1: और उनके विश्वास जीतने की सबसे बड़ी बात है तभी जीत हासिल की जा सकती है। नशे की जागरूकता के लिए पुलिस को छात्रों युवाओं शिक्षण संस्थानों अभिभावकों सबको एक साथ लेकर चलना होगा क्योंकि समस्या तो परिवार समाज और स्कूल से शुरू होती है, तो यदि युवाओं से बातचीत की जाएगी तो कहीं ना कहीं हल तो मिलेगा।
0: हम लोग युवाओं से पूरी बातचीत करना है, हमारा संवाद जो जैसे मैं बताया कि हमारे सभी साथी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जब ये एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकाथन होती है 4 जो इसके एडिशन हो गए उसमें हम लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का युवाओं से सीधा संवाद होता है, तो मुझे लगता है कि जो एक इसका उद्देश्य था कि पूरे प्रदेश में एक अवेयरनेस आ जाए चेतना आ जाए, तो पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूँ, शायद पिछले साल सितंबर तक ये हाल था कि लोग सोचते थे ठीक है ये एक नशे की समस्या है क्राइम है ये तो पुलिस को देखना चाहिए, पुलिस की समस्या है या पुलिस की जिम्मेदारी क्राइम से निपटना, अब हर एक को पता चल रहा है कि नहीं ये हम सबकी मिली जुली समस्या है और हम सबको मिलकर लड़ना।
1: तिवारी जी, अहम सवाल ये आता है हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए भविष्य में पुलिस की क्या कार्य योजना रहेगी?
0: देखिए, पुलिस की भूमिका या एक सक्रिय भूमिका केवल नशे या छिट्टे से लड़ाई में नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश को एक शांत प्रदेश बने रहना है, एक टूरिज्म

0: के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी स्टेट बने रहना है, जहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि पूरे देश से महिलाएं निडर होके यहाँ आके घूम सके, अकेले
1: जी
0: परिवार
1: बिल्कुल
0: के साथ नहीं, अकेले
1: जी
0: सोलो फीमेल ट्रेवलर जिसको हम कहते हैं। तो इन सभी में हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका की ज़रूरत है। और मैं आपको आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि पूरी हिमाचल प्रदेश पुलिस, चाहे वो बाहर के टूरिस्ट हैं, चाहे प्रदेश के लोग हैं इधर उधर घूम रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई भी उनको मदद चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को, चाहे वो मैंने बताया 112 पे या हमारे थाने चौकी हैं उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने सभी साथियों को केवल एक स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि देखिए, जो भी हमारे पास आता है हमें उसके बाद पेशेंटली सुननी है, हमें उससे पूरी विनम्रता और शालीनता के साथ व्यवहार करना है। यदि सामने वाला या सामने वाली किसी कारणवश एजिटेटेड भी है, और अगर वो अपना टेम्पर लूज कर लेता है या कर लेती है, फिर भी हमको अपनी शालीनता बनाए रखनी है, जो मदद कर सकते हैं वो करनी है। और यदि किसी ने कानूनन अपराध किया है या किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी है, लेकिन वही शालीनता मर्यादा बनाए रखेगा।
1: तिवारी जी, हमारे आंगन में फिर से चिड़िया गाए, पर्यावरण का शोर कम हो, पेड़ कम कटें। जब तक प्रकृति सुरक्षित है तब तक ही हमारा अस्तित्व है। स्वच्छ पर्यावरण को लेकर आज आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, हम सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बाकी देश के मुकाबले या बाकी विश्व के मुकाबले यहाँ काफ़ी अच्छा है। जो फॉरेस्ट कवर की हम बात करें या क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर है। अब सवाल ये है कि क्या ये हम अपनी अगली पीढ़ी को छोड़ के जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: अगर हम केवल ये सोचें कि नहीं अभी तो ठीक है और बस जो हम कर रहे हैं उल्टी सीधी हरकतें या ऐसा कुछ कर रहे हैं लोग कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे इन्वायरमेंट जो अफेक्ट हो रहा है एडवर्सली, तो वो हम फिर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अगर एक हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाए तो जो ये 5 जून की इवेंट है उसमें एक बड़ा पर्पज़ या जो एक मैसेज डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग के साथ मिलकर देना चाहता है वो ये कि जैसे चिट्टे की लड़ाई हम सबकी मिली जुली लड़ाई है, तो ऐसे हिमाचल प्रदेश के जो इन्वायरमेंट को, हिमाचल की क्लीनलीनेस या ग्रीननेस है, इसको बनाए रखना है, ये हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और मैं इन्वायरमेंट को डैमेज करता रहूँ।
1: बिल्कुल
0: तो ये एक मिली जुली जिम्मेदारी का एक मैसेज, और जैसा मैंने पहले बोला, अगर ये भी हम युवाओं के मन में डाल पाएँ और युवाओं को अवेयर कर पाएँ, तो मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश का जो एक इन्वायरमेंट है क्लीन और ग्रीन, ये लंबे समय तक चलेगा और हम अपनी अगली पीढ़ी को भी गौरव से ये दे पाएंगे।
1: तिवारी जी, आकाशवाणी के माध्यम से नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मेरा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही ये संदेश है, वो ये कि चिट्टे पर प्रहार, हिमाचल है तैयार। तो हम सब मिलजुल
1: जी
0: कर अगर चिट्टे से लड़ाई करेंगे तो हम जरूर चिट्टे पर विजय पाएंगे।
1: अशोक तिवारी जी, आज हमने नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण पर आपसे बातचीत की। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश श्री अशोक तिवारी से भेंटवार्ता। भेंट करता सपना ठाकुर, आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:18 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

चित्ररो कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में कलंक फिल्म का गाना, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, और समाचार संध्या के बाद रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया।

0: आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

पर असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सीक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत।

कार्यक्रम विज्ञान जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विज्ञान जगत कार्यक्रम में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हम सफर शिवाली और विज्ञान से जुड़ी हुई बातों के साथ हम आपके साथ चर्चा करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और गीतों के साथ करते हैं आपका मनोरंजन। तो चलिए, जो अब आज हम बात करने जा रहे हैं वो है

उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किए गए, जिससे सभी महत्वपूर्ण उप प्रणालियों के प्रदर्शन की पुष्टि हुई है। प्रक्षेपण के बाद मिसाइल को पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक सटीक रूप से पहुंचाया गया और मंत्रालय ने कहा है कि सभी परीक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है, जिसकी पुष्टि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR द्वारा तैनात विभिन्न रेंज उपकरणों के माध्यम से प्राप्त उड़ान डेटा से हुई है। रुद्र AM2 को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र RCI द्वारा विकसित किया गया, जो इस परियोजना के लिए नोडल DRDO प्रयोगशाला है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, शस्त्र अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और ITR सहित अन्य DRDO सुविधाओं के सहयोग से ही विकसित किया गया। विकास सह उत्पादन साझेदारों DSPP ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL क्षेत्रीय सैन्य वायु योग्यता केंद्र RCMA मिसाइल प्रणाली गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी और कई उद्योग भागीदारों जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर मिसाइल के विकास में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षणों के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास भागीदारों और उद्योग जगत के हितधारकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उपलब्धि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाती है। ये उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्यों में योगदान देगी। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव DRDO ने अध्यक्ष ने भी परियोजना की सफल उपलब्धि पर इससे जुड़ी टीमों को बधाई दी है। रुद्र AM2 भारत की पहली स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय वायुसेना ने जून 2026 में ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सुखोई 30MK फाइटर जेट के जरिए इसका एक और सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। इसकी अगर विशेषताओं और क्षमताओं की अगर बात की जाए तो ये मिसाइल हवा से सतह पर लगभग 300 से 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है। रुद्र AM2 लगभग Mach 5.5 की अत्यधिक तीव्र गति हासिल कर सकती है, जिसे दुश्मन के एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलता। ये अपने साथ लगभग 200 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार वारहेड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल एक परिष्कृत हाइब्रिड सिस्टम से लैस है, जिसमें इनिशियल नेविगेशन, GPS और पैसिव होमिंग हेड शामिल है। ये 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी से ही दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार संकेतों को पकड़ लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर हमला होने के डर से दुश्मन अपना रडार सिस्टम बंद कर दे तो ये मिसाइल रडार के आखिरी सिग्नल लोकेशन को याद रखकर उसे खोज निकालती है और पूरी तरह तबाह कर देती है। इसके रणनीतिक महत्व की बात की जाए तो सबसे पहले है सीड मिशंस। इसे मुख्य रूप से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशनों के लिए तैयार किया गया है। युद्ध की शुरुआती समय में दुश्मन के सुरक्षा घेरे और वार्निंग सिस्टम को अंधा कर देती है, जिससे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर पाते हैं। विमानी पर तैनाती वर्तमान में इसे सुखोई 30MK से टेस्ट किया गया, लेकिन भविष्य में इसे स्वदेशी तेजस Mach 2 और राफेल लड़ाकू विमानों में भी एकीकृत किया जाएगा। रूसी मिसाइलों का विकल्प ये भारतीय बेड़े में पहले से शामिल पुरानी रूसी मूल की KH-31 एंटी रेडिएशन मिसाइलों की जगह लेगी और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। रुद्र AM2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जो हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है।
ये शत्रु से कई प्रकार के हथियारों को नष्ट कर सकती है और ये भारत की हवाई सुरक्षा रक्षा तैयारियों को मजबूत

मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके शक्ति गुणक के रूप में भी ये काम करता है। इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों सहित उन्नत रेंज ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके किया गया है। ये रूस की KH-31 मिसाइल को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिसका उपयोग वर्तमान में भारत के सुखोई लड़ाकू विमानों में किया जाता है। जी, आगे और जानकारी की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने स्वच्छ और ऊर्जा कुशल रासायनिक विनिर्माण के लिए प्रकाश संचालित नैनो उत्प्रेरक विकसित किए हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक नवीन प्रकाश चालित नैनो उत्प्रेरक विकसित किया है, जो विषाक्त विलायकों और उच्च तापमान प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करके दवाओं और औद्योगिक रसायनों के निर्माण को स्वच्छ, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल बना सकता है। शोध दल ने सोने और पैल्डियम नैनोकणों को बॉडीपाई नामक प्रकाश अवशोषित अणु के साथ मिलाकर एक संकर नैनो मिश्रित पदार्थ विकसित किया। ये पदार्थ प्रकाश संचालित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं को पारंपरिक उत्प्रेरक प्रणालियों की तुलना में अधिक कुशलता से गति प्रदान करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ये तकनीक उद्योगों को प्रदूषण, ऊर्जा खपत और विनिर्माण प्रक्रियाओं में हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करने में मदद कर सकती है। नैनोस्केल नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया कि सिस्टम में मौजूद सोने के नैनोकण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे बॉडी पाई अणु में स्थानांतरित करते हैं, जो फिर उस ऊर्जा को पैल्डियम को देता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया को संचालित करने वाला सक्रिय उत्प्रेरक है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सोने बीओडीपी और पैल्डियम की संयुक्त परस्पर क्रिया एक जैसी उत्प्रेरक प्रक्रिया को जन्म देती है, जो तीनों घटकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जा सकने वाली प्रक्रिया से कहीं अधिक कुशल है। नैनो उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं को हल्के और पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में होने की अनुमति देता है, जिसमें जहरीले विलायकों के स्थान पर पानी का उपयोग और ऊर्जा गहन तापन प्रणालियों के स्थान पर प्रकाश का उपयोग शामिल है। इस तकनीक को डॉक्टर प्रकाश पी नीलकांतन ने विकसित किया और इससे दवाओं और औद्योगिक रसायनों के स्वच्छ और अधिक लागत प्रभावी उत्पादन में सहायता मिलने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये विकास दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं, कम ऊर्जा उपयोग और सस्ती हरित प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच में योगदान दे सकता है। जी, आगे हम आपको और रूबरू करवाएंगे विज्ञान से जुड़ी बातों के साथ, लेकिन अब यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और देखिए, नई नई जानकारियों के साथ हम हाजिर होते हैं आपके साथ। और अब हम बात करेंगे कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर रक्षा विनिर्माण के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत की रक्षा उत्पादन और डाटा सेंटर संबंधी महत्वाकांक्षाएं एक ही बाधा विश्वसनीय बिजली पर आकर रुक रही है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर रक्षा विनिर्माण के लिए सटीक बिजली आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं और उभरते रक्षा गलियारों में उनकी तैनाती मिशन महत्वपूर्ण अभियानों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती है। विशेषज्ञ ने मंगलवार को ये कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर आर श्रीकांत ने रक्षा विनिर्माण और डाटा सेंटर संचालन के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर नीतिगत संवाद में कहा है कि परमाणु ऊर्जा के बिना हम ऊर्जा परिवर्तन नहीं कर सकते। ये संवाद चिंतन रिसर्च फाउंडेशन और फिनोविस्टा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के नेतृत्व में मंथन नामक एक पहल का सहयोग लिया गया। पैनल ने भारत के निम्न कार्बन संक्रमण में परमाणु ऊर्जा की भूमिका सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ती बिजली की मांग और

अनिश्चितता की चुनौतियों से निपटने में परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा की पूरक भूमिका पर प्रकाश डाला है। चर्चाओं में भारत के भविष्य के ऊर्जा भंडार, परमाणु ऊर्जा के योगदान पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष रूप से विकसित भारत 2047 के संदर्भ में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर बढ़ती निर्भरता की अपेक्षाओं के संदर्भ में है। सीआरपीएफ के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने भारत की बढ़ती भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि बढ़ती औद्योगिक और रणनीतिक मांग को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्केलेबल एसएमआर को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए लागत, ईंधन सुरक्षा, विनियमन, तैनाती, अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षा के सवालों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विनोविस्टा के सह संस्थापक विमल कुमार ने रक्षा विनिर्माण के लिए विश्वसनीय और सटीक बिजली आपूर्ति में सहायक एसएमआर की क्षमता पर प्रकाश डाला है। एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के पूर्व सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को अब एक आकांक्षा के बजाय एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के कम कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके दीर्घकालिक महत्व को रेखांकित किया है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ने कहा है कि पैनल चर्चा में परमाणु ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, डिजिटल अवसंरचना, वित्त और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञ ने भाग लिया। चर्चाओं में भारत के निम्न कार्बन संक्रमण, रणनीतिक ऊर्जा लचीलापन और मिशन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के समर्थन में एसएमआर की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के प्रमुख के मुख्य परिचालन अधिकारी ने कहा है कि विश्वसनीयता, लचीलापन और संप्रभुता ई गवर्नेंस प्रणालियों के लिए उभरती हुई आवश्यकताएं हैं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए भरोसेमंद बिजली आपूर्ति का समर्थन करने में एसएमआर की क्षमता को रेखांकित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल शासन सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और विविध ऊर्जा स्रोत आवश्यक हैं। जी देखिए, आगे हम बात करेंगे कि हमारे जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनकी चेतावनी है कि टेक गैजेट्स पर निर्भरता हमारे दिमाग के लिए घातक हो सकती है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम कोई काम नहीं करते हैं फिर भी पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं और एक साथ ज्यादा सूचनाओं का असर भी इसे सोचने की क्षमता भी घटती है। देखिए पूरा दिन हमारा सोफे या बिस्तर पर निकल गया, कोई शारीरिक काम हमने नहीं किया फिर भी बहुत थकान हमें महसूस हो रही है और अगर ऐसा है तो ये है ब्रेन रॉट। ये कोई मेडिकल शब्द नहीं और ऑक्सफोर्ड से ने इसे 2 साल पहले वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, लेकिन अब ये दुनिया भर के डॉक्टर और मनोवैज्ञानिकों के लिए चिंताजनक शब्द बन गया है। एक यूनिवर्सिटी में शोध के अनुसार जब पता चला कि जब हम बिना दिमाग चलाए सिर्फ देखते, सुनते या सोचते हैं तो दिमाग पर बोझ पड़ता है। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इस दौर में इंसान को असीमित लगातार नई जानकारी मिलती रहती है। आसानी से उपलब्ध सूचनाओं के कारण दिमाग सोचना, चिंतन करना बंद कर देता है, लेकिन बहुत सारी गैर जरूरी डेटा के बोझ से वे थक जाता है। रील्स, शॉर्ट्स और एआई इस नुकसान को और बढ़ा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और दिमाग को सक्रिय करने के लिए कुछ अलग तरीकों को आजमाना चाहिए। देखिए दिमाग को तेज रखने के लिए बड़े बदलाव नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में सुधार होना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट रुककर आसपास की आवाजें जैसे घड़ी की टिक टिक, पक्षियों की कलरप में किसी एक आवाज पर ध्यान टिकाएं। इसे अटेंशन मसल विकसित करना कहते हैं और इसके बाद अपने तनावों के कारण को कागज पर लिख कर नाम दे। इससे दिमाग तुरंत तर्क संगत सोचने लगता है। क्रिकेट, क्रॉसवर्ड, माइंडफुल वॉक, डिजिटल डिटॉक्स और बार बार काम बदलने की आदत छोड़ना भी ध्यान और याददाश्त को बेहतर कर सकता है। देखिए फोकस ऑन ऑफ के लेखक ऑस्कर डी बॉस के अनुसार जब हम काम के बीच में ध्यान हटाते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा पिछली गतिविधि में ही अटका रहता है। इसे प्रबंधन मनोविज्ञान में ध्यान का भटकाव कहते हैं।
इससे बचने के लिए जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसे पूरा करें, फिर दूसरा काम शुरू करें। ऑस्ट्रेलिया की न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा है कि दिमाग की क्षमता एकाग्रता बढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 बार कठिन कसरत जरूरी है। इसके लिए 10 सेकंड पूरी ताकत से कठिन मेहनत और फिर 20 सेकंड आराम करना होता है। इसे 8 बार दोहराएं, इससे आपके दिमाग की नसों को ताकत मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कोई गैजेट देख के, कोई किसी तरह का उपकरण देखकर अगर आपको इस तरह की फीलिंग आती है, तो आप अपने गैजेट से थोड़ा दूर हो जाएं और अपने दिमाग को क्रिएटिव कामों में लगाएं। देखिए, चंद्रमा पर दोबारा बसने की होड़ के बीच नासा ने चंद्रशहर के लिए अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है। नासा ने चंद्रमा पर मानव की स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जो अपोलो युग के अल्पकालिक मिशनों से हटकर एक स्थायी चंद्र बस्ती के विकास की ओर एक बदलाव का संकेत है। देखिए, आगे इसके बारे में हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर हो जाए एक म्यूजिकल ब्रेक।

जी, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पर दोबारा बसने की होड़ के बीच नासा ने चंद्र शहर के लिए अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है। देखिए, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव नासा के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में उभरा है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थायी रूप से छायादार क्रेटर्स में पानी की बर्फ होने का अनुमान है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को बनाए रखने और भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए रॉकेट ईंधन का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। देखिए, नासा की मुख्य वास्तुकार नुजौद मेरांसी ने कहा है कि जैसे जैसे आप इसका निर्माण शुरू करते हैं, ये धीरे धीरे एक शहर की तरह फैलने लगता है। अपोलो कार्यक्रम के विपरीत, जो काफी हद तक सरकार द्वारा विकसित प्रणालियों पर निर्भर है, नासा ने कहा है कि वाणिज्यिक कंपनियां चंद्रमा बेस के बुनियादी ढांचे के निर्माण और संचालन में केंद्र भूमिका निभाएगी। हम 1960 के दशक की नासा की कार्यप्रणाली का लाभ उठा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि अस्तित्व के इस महाकाव्य विज्ञान में क्या काम करता है और क्या नहीं। घर से कई महीनों तक दूर रहने की तुलना में 4 दिन टूर रहने पर ऐसा करना बेहतर होगा। और हालांकि नासा के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को भू राजनीतिक प्रतियोगिता के रूप में वर्णित करने से परहेज किया है, लेकिन उन्होंने चंद्रमा पर दीर्घकालिक अमेरिकी उपस्थिति और नेतृत्व के महत्व पर बार बार जोर दिया है। जी हाँ, तो ये तो था हमारा आज का विज्ञान जगत कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नई जानकारियों के साथ। तो अब तब तक के लिए अपनी रेडियो हमसफर शिवाली को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

श्रोताओं, रात्रि के ठीक 10 बजे हैं, 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं रोमांटिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, हवाएं धीमे धीमे कोई मधुर सरगम गुनगुना रही है, और ऐसे ही खुशनुमा माहौल में आपका स्वागत है कार्यक्रम चांदनी रातें में। और मैं हाजिर हूं आपका रेडियो दोस्त प्रवीण। श्रोताओं, कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा एहसास है जो शब्दों से नहीं, दिल की धड़कनों से महसूस किया जाता है। जब किसी की मुस्कान हमारी खुशी बन जाए, किसी की आवाज़ सुकून देने लगे और किसी की याद हर पल साथ रहने लगे, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत ने दिल में दस्तक दे दी है।

सच्चा प्यार कभी शोर नहीं करता, वह तो धीरे धीरे दिल में उतरता है और फिर पूरी ज़िंदगी में अपनी खुशबू बिखेर देता है।

ही आपकी हर दुआ में शामिल होने लगे, हर ख्वाब में दिखाई देने लगे और हर खुशी का कारण बन जाए, तो समझ लीजिए दिल अपनी मंजिल तलाश चुका है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से रोमांटिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। श्रोताओं, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, यह तो बस एक खूबसूरत एहसास है जो जीवन को नई रोशनी और नई उम्मीदों से भर देता है।

जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं तो मौसम भी सुहाने लगते हैं और ज़िंदगी का हर रास्ता खूबसूरत दिखाई देने लगता है।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चांदनी रातें यहीं संपन्न होता है। तो अपने रेडियो दोस्त प्रवीण को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और

0: अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।